0: अनमोल विचार।
1: ज्ञान वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। ये ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना समय कम कर सकता है। जितना अधिक सीखते हैं उतना ही सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ज्ञान बांटने से घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है।

करना नवनिर्माण इस शीर्षक से मातृवंदना सुनने के पश्चात श्रोताओं कार्यक्रम में अब लीजिए से सुनिए कार्यक्रम का ये पहला भजन वाणी जयराम के स्वर में, रचना मीराबाई की।

श्रोताओ, कार्यक्रम में अभी आप वाणी जयराम के स्वर में मीरा बाई की लिखी रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं नितिन मुकेश के स्वर में ये भजन।

0: भजन के साथ ही भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें खीरे की खेती के संदर्भ में। हमारे द्वीप समूह की जलवायु खीरे की खेती के लिए पूरे वर्ष भर उपयुक्त है। दूसरी फसलों की ही तरह खीरे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हम अच्छी किस्मों का चयन करें। खीरे की अच्छी किस्मों में जापानीज लॉन्ग ग्रीन, बालम खीरा, पूसा अलंकार, पूसा संयोग आदि मुख्य हैं। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग अथवा कृषि विज्ञान केंद्र व केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। साल भर खीरा पाने के लिए इसके बीजों को हर 2 माह के अंतर पर लगाते रहें। खीरे के बीजों को समतल भूमि या टेरेसेस पर पंक्तियों से पंक्तियों के बीच की दूरी 2.5 मीटर व पौधे से पौधे के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर रखते हुए लगा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर 3 से 4 बीज लगाएं। ढालू जमीनों पर खीरा लगाने के लिए 2.5 मीटर की दूरी पर त्रिकोण विधि अपनाकर घेरे बनाएं। प्रत्येक घेरे में 5 से 6 बीजों को बोएं। बीज लगाने से पहले तैयार की गई जगहों पर अच्छी सड़ी गोबर की खाद व कीटनाशक का धूल डालें। ढाल पर लगाए गए पौधे में प्रत्येक स्थान पर 3 या 4 पौधे तथा समतल भूमि पर 2 पौधों को रहने दें, बाकी पौधों को निकाल दें। शुष्क मौसम में पानी की सुविधा होने पर 1 हफ्ते के अंतर पर सिंचाई जरूर करें। सूखे के समय पौधे में नमी बनाए रखने के लिए उनके चारों ओर घास फूस का बिछावन बिछाएं। किसान भाइयों, चूंकि खीरे के पौधों की जड़ें भूमि के ऊपरी धरातल पर ही रहती है, अतः अंतराशस्य क्रियाएं करते समय जड़ों के पास की मिट्टी को ज्यादा गहरी न खोदें। पौधों की जड़ों के पास की मिट्टी को ढीला करके खरपतवार वगैरह निकालते रहें। किसान भाइयों, जहां तक खीरे में उर्वरकों का सवाल है, 110 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग में लाना चाहिए। खाद एवं उर्वरकों की सही सही मात्रा का पता लगाने के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। खीरे में नर फूल ज्यादा व मादा फूल कम आते हैं। इसको कम करने के लिए आप जिब्रेलिक एसिड के 10 से 15 PPM घोल का छिड़काव करें। पहला छिड़काव 1-2 पत्ती की अवस्था में तथा दूसरा छिड़काव 4 पत्ती की अवस्था में करें। किसान भाइयों, हमारे द्वीपों में खीरे में कुछ एक कीड़ों का भी प्रकोप देखा गया है, जिनमें से प्रमुख हैं फल मक्खी तथा रेड पम्पकिन बीटल। फल मक्खी की शिशु अवस्था फलों को अंदर से खाकर नुकसान पहुंचाती है। इससे पूरा फल सड़कर खराब हो जाता है। रेड पम्पकिन बीटल खीरे की फसल में प्रारंभिक वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर काफी नुकसान पहुंचाती है। इस कीड़े की सुंडियां पौधे की जड़ों को खाकर भी क्षति पहुंचाती हैं। यही नहीं, इनकी सुंडियां जमीन की सतह पर फैली हुई बेलों व पत्तों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इन कीड़ों के प्रकोप को देखते ही इनके नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए। खीरे की फसल में स्टिंग बग व माहू भी हानि पहुंचाते हुए देखे गए हैं। ये दोनों प्रकार के कीड़े पौधों की रसों को चूसकर क्षति करते हैं। इनके नियंत्रण के लिए भी आप तुरंत उपाय करें। कीड़ों के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जिसके लिए आप पौध रक्षा विशेषज्ञों से सलाह करें। अंतिम उपाय के रूप में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है।
0: श्रोताओ, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में।

0: उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram. The new Greenfield Airport has been built under the public-private partnership mode at the cost of over 5,600 crore rupees. The Prime Minister will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Visakhapatnam. It is Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility approved under the India Semiconductor Mission. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak. Social media company Meta's global team, which has been summoned by the center after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithm bias and their role in public order. Official sources told Akashvani News that Meta's global team is expected to be questioned sometime in the middle of the next week. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. Prime Minister Narendra Modi spoke with the Prime Minister of the United

0: Kingdom Andy Burnham and congratulated him on assuming office. In a social media post yesterday, Mr. Modi said during their conversation they agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defense, security, clean energy, education and people-to-people ties and take the India-UK comprehensive strategic partnership to new heights. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first ever bronze medal in the decathlon and booking places for 10 boxers in their respective finals. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल 2 तारीख को दोपहर 2 डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर आज सुबह 7 श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल 2 तारीख को शाम 4 कार्निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जहाज नालंदा नानकौरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 4 तारीख को सुबह 9 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 6 तारीख को सुबह 8 कैमल बे से चलकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैमल बे लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 2 तारीख को सुबह 9 लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल 2 तारीख को ही रात्रि 9 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान दोपहर 1 शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान आज दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल 2 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटान स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 2 तारीख को सुबह 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल 2 तारीख को ही दोपहर 12 रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉलीपॉय शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: जलयानों के यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इंद्रधनुष कार्यक्रम को सजाएंगे माँ शब्द से। ममता और निस्वार्थ प्रेम की मूरत माँ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और समर्पण की एक ऐसी मूरत है जिसका कोई विकल्प नहीं। इस दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों से बिना किसी शर्त या उम्मीद के निस्वार्थ प्रेम करती है। हमारा अस्तित्व ही माँ से शुरू होता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है तो माँ ही उसकी पहली ढाल और पहला सहारा बनती है। वह बिना अपनी परवाह किए रात रात भर जागकर अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती है। माँ का स्नेह उस शीतल छाँव की तरह है जो जीवन की हर धूप और कठिनाई से हमें बचा कर रखती है।

माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। वह हमें न केवल चलना, बोलना और खाना पीना सिखाती है, बल्कि जीवन में सही और गलत की पहचान भी कराती है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं या निराश होते हैं, तो माँ का एक थपकी भरा हाथ और उसके सांत्वना भरे शब्द हमें फिर से उठ खड़े होने का हौसला देती है। वह हमारी खुशियों में सबसे ज़्यादा खुश होती है और हमारे दुखों में सबसे ज़्यादा दुखी। जीवन के हर मोड़ पर माँ एक ऐसी मार्गदर्शक बनकर साथ खड़ी रहती है जो हमें कभी सही राह से भटकने

माँ के आंचल में जो सुकून और सुरक्षा महसूस होती है, वह दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। वह अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ढेरों इच्छाओं का चुपचाप त्याग कर देती है। माँ का स्थान और उसका ऋण जीवन भर कोई नहीं चुका सकता। उनके चरण में ही स्वर्ग है और उनका आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उन्हें वह सारा प्यार और खुशी देनी चाहिए जिसकी वे हकदार हैं।

0: इंद्रधनुष कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष
2: श्रोता, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर सीमा की थी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं श्रोताओं। आरंभ होता है रामचरित मानस गान।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

सुरेश वाटकर और रविंद्र साठे की आवाज़ों में श्रोताओं अभी आप रामचरित मानस गान की 317वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसके तहत विषय रहेगा स्तनपान, स्वस्थ जीवन की नींव। विशेषज्ञ होंगी सीनियर रेसिडेंट इन पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रतिभा। तो श्रोताओं, समय याद रखिएगा, आज सुबह 7:30।

भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में यह बताया गया है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से लेकर 45 प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, जिससे समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 अगस्त तक समुद्र में ना जाए। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देशरागनि, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर इसी समय पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप फरीदा खानम, मेहदी हसन, गुलाम अली, इकबाल बानो व छाया गांगुली को सुन पाएंगे। सुबह 9:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कर्नाटक शैली में सुधा रघुनाथन का गायन आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम कशिश का लुत्फ उठाइए सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे गीत गुंजन कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत सुनिए दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें कुछ फिल्मी गीत सुनवाई जाएंगी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुमन रॉय को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए दोपहर 1:30 पर। श्रोताओं, दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ ही प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत दोपहर बाद 2:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक आप सुनेंगे, तथा दोपहर बाद 3:30 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए।

शाम 4 बजे हमारे दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार के कुछ गीत। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में विषय चारा घास की खेती व पशुपालन से जुड़े किसान एटम पहाड़ निवासी श्री जी दामोदर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। लेखक दिलीप नीमा की लिखी झलकी लौट के बुद्धू सुनिए शाम 6:45 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं सुनिए शाम 7:15 पर। शाम 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, युवा श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम युववाणी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम ऐसा भी होता है, जिसे आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8 बजे संसद, इस सप्ताह संसद से 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती तथा रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत आप चिन्मया बहनों से कर्नाटक शैली में युगल गीत सुनेंगे तथा रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। सुबह के 6:55 होने को है और अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आन्ध्रप्रदेश कर्णाटक यात्रायां भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे प्रधानमन्त्री भोगापुरम् इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजू अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 600.5 लाख करोड़ रूप्यकाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60 लाख यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री 80.8 लाख करोड़ रूप्यकाधिक व्ययुता राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति, तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमन्त्री कर्णाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेषभावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न अपितु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिकसञ्चारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रियराजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत् यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपितु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा सञ्चयन प्रणालिभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा सञ्चयन प्रणालीनां न्यूनतम सञ्चयन क्षमता 2 होरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 तम वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीर प्रदेशस्य तथाकथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमान

0: स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 21.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:07 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45। श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा स्तनपान स्वस्थ जीवन की नींव। विशेषज्ञ होंगी सीनियर रेसिडेंट इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रतिभा। श्रोता फोन नंबर 2325। सुबह 9 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम कशिश का लुत्फ उठाइए सुबह 10 दिन के 11 आप सुनेंगे गीत गुंजन कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत सुनिए दिन के 11:30 पर। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 होने को है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से आज चिड़िया टापू जैविक उद्यान में वर्षावन पक्षी अवलोकन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चिकित्सा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया और राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्षों की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा, पीएम किसान योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली द्वारा पात्र किसान परिवारों को समय पर और पारदर्शी आय सहायता प्रदान की जा रही है। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 30-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से आज चिड़िया टापू जैविक उद्यान में वर्षा वन पक्षी अवलोकन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देना और द्वीप समूह की समृद्ध पक्षी विविधता एवं प्राचीन वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसमें भाग लेने के अन्य इच्छुक प्रतिभागी सुबह 7:30 बजे जैविक उद्यान में सीधे शामिल हो सकते हैं। पक्षी अवलोकन यात्रा 8 बजे शुरू होगी। चेन्नई मुख्यालय द्वारा दक्षिण भारतीय क्षेत्र के अधीन भारतीय सेना की ओर से चलाए जा रहे अभियान दिल्ली टू द्वीप 2.0 के तहत द्वीप समूह में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार इस रैली में भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों से प्रवेश पत्र www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड करने को कहा गया है। ये भर्ती रैली 23 से 26 अगस्त तक नेताजी स्टेडियम में होगी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्यारहचरमा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अस्थायी वरीयता सूची आज दिन में 11 बजे सामान्य कॉलेज प्रवेश पोर्टल के अलावा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर दर्शा दी जाएगी। इस संबंध में दावे और आपत्तियां 4 अगस्त शाम 5 बजे तक संस्थान के ईमेल पर या सीधे जमा किए जा सकते हैं। अंतिम वरीयता सूची 6 अगस्त शाम 3 बजे प्रकाशित की जाएगी। मानविकी विषय के लिए 12 अगस्त और विज्ञान विषय के लिए 13 अगस्त को परामर्श सत्र आयोजित किया जाएगा। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कल न्यू बिमलीटान और कामराज नगर में पशुपालकों को उनके घर घर जाकर पशु पुष्टि किट और हाइब्रिड नेपियर स्टेम कटिंग्स का वितरण किया। इस किट का वितरण वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा अस्पताल ग्यारहचरमा की ओर से किया गया, जिसके तहत जिन किसानों के पशुओं में भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन्हें कुल 5 पशु पुष्टि किट प्रदान किए गए। वितरण के दौरान टीम ने लाभार्थियों को किट के सही उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए संतुलित आहार, पर्याप्त स्वच्छ पानी और नियमित स्वास्थ्य निगरानी सहित वैज्ञानिक पशुपालन प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से डिगलीपुर उप जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को तत्काल सुदृढ़ करने और पूरे द्वीप समूह के

सभी चिकित्सा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए सांसद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप और बुनियादी ढांचे की समीक्षा के निर्देश देने व सभी रिक्त चिकित्सा तथा पैरामेडिकल पदों को शीघ्र भरे जाने का अनुरोध किया। राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। पदक तालिका में भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। भारत के खाते में अब 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान में कांस्य जीतकर इस स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों का पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से हाल ही में आयोजित 12 दिवसीय फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक संतोष साहू ने संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण का लाभ उठाकर स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि रोजगार न केवल उन्हें वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाएगा बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं को भी उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान के 24 ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। समाज कल्याण निदेशालय की राज्य बाल संरक्षण समिति की ओर से गुप्तापाड़ा पंचायत में बाल श्रम की रोकथाम और बाल अधिकारों का संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और यूनिक डिसएबिलिटी ID योजनाओं के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर गैर सरकारी संगठन पंख की संस्थापिका ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सीखने, खेलने, सुरक्षित माहौल में बढ़ने और अपनी पूर्ण क्षमता हासिल करने का अधिकार है। गुप्ता कपाड़ा पंचायत प्रधान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों की सुरक्षा और एक सुरक्षित समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करते हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। डीब्रेट में विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के वर्चुअल रूप से संबोधित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी पहली हेडलाइन बनाई है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा आज विशेष लोक अदालत आयोजित करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने जगह दी है। पर्यटन विभाग की ओर से आज चिड़िया टापू में वर्षा वन पक्षी अवलोकन आयोजित करने के समाचार को इन्फो इंडिया ने, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने सांसद द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किए जाने के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 30-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से आज चिड़िया टापू जैविक उद्यान में वर्षा वन पक्षी अवलोकन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से चिकित्सा केंद्रों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

देश रागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में जहां हम बयां करते हैं हमारे देश के प्रति प्रेम और सम्मान। श्रोताओं, हमारा देश भारत विश्व के सबसे अनोखे देशों में से है। यहां अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, वेशभूषाएं और परंपराएं होने के बावजूद हम सब एक हैं। यही भाईचारे की भावना हमें खास बनाती है। चलिए कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, जहां हर भारतीय ये कहता है कि विश्व के किसी भी देश की तुलना हमारे भारत से नहीं की जा सकती। धर्म मेरा इंडिया, कर्म मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया।

श्रोताओं, हम अपने कार्यक्रम के जरिए बयां करते हैं हमारा देश के प्रति प्रेम। देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को व्यक्त करने के सबके अपने तरीके हैं। कोई कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करता है, कोई सरहद पर मुश्तैदी के साथ तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, कोई अपने हुनर और कठिन परिश्रम से पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है। और हमारे गीतकार कुछ यूँ कहते हैं कि हर कर्म हम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं हेमलता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारा विषय है स्तनपान, स्वस्थ जीवन की नींव। हर वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और शिशुओं को एक स्वस्थ भविष्य मिले। श्रोताओं, एक माँ अपने बच्चे के जन्म के पहले दिन से ही उसकी सेहतमंद भविष्य की नींव रखती है उसे स्तनपान कराकर। अगर आप नई नई माँ बनी हैं या आप माँ बनने वाली हैं, तो अपने प्रश्नों के साथ जुड़िए हमारे इस लाइव फोन इन कार्यक्रम से। हमारा फ़ोन नंबर है 2325400। नंबर एक बार फिर दोहरा दें, 232540। और हमारे वीपो का एसटीडी कोड है 03192। आज का हमारा विषय स्तनपान, स्वस्थ जीवन की नींव। इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सीनियर रेसिडेंट इन पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रतिभा। डॉक्टर प्रतिभा, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रतिभा, बाल रोग विशेषज्ञ, यहाँ आज विश्व स्तनपान सप्ताह, जो हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ आज उपस्थित हूँ।
0: जी, तो डॉक्टर प्रतिभा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो स्तनपान सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है?
1: देखिए, इसका उद्देश्य सभी माताओं, परिवारों और समाज को स्तनपान के प्रति जागरूक करना, स्तनपान शिशु को सर्वोत्तम पोषण, इम्यूनिटी और एक हेल्दी ग्रोथ देता है, वहीं माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभकारी है, इसीलिए इसे स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव माना जाता है।
0: जी, तो डॉक्टर प्रतिभा एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: धर्मवीर, गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी धर्मवीर जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: हमें ये जानना है कि जैसे जो अपनी माताएं जो अपने बच्चे को दूध कम उनपे बनता है, तो उनको क्या ऐसी डाइट खानी चाहिए कि जैसे उनको ज्यादा अपना बच्चे को पूरा पेट भर के उनको दूध मिले, और कई होती है जो कि अपना फिगर ना खराब हो जाए, इस कारण से भी बच्चों को दूध नहीं दे पिलाते हैं, तो इसमें काफी बच्चे को आगे देखा गया प्रैक्टिकल कि वो बच्चा कमजोर ही जाता है, हर चीज से कमजोर रहता है, मानसिक रोग से भी अपनी जो सोचने की शक्ति इसमें कम ही रहती है। जो बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है, उसमें काफी हद तक काफी चीजें कुदरती डेवलपमेंट हो जाती हैं, तो कई महीनों के दूध से कम होता है, उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे इसके बारे में कृपा करके आप? धन्यवाद।
1: नमस्कार धर्मवीर जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये पता है कि बच्चे को माँ का दूध ना पीने पे उसको क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जिन महिलाओं में ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कम दूध या बच्चे को सही से दूध ना पिला पाना, तो ऐसे समय में क्या करना है कि माँ को अधिक कैल्शियम युक्त खाना देना है, और अधिक तरल पदार्थ और लिक्विड डाइट भी साथ के साथ देना है, कि पानी की कमी को पूरा रखना है, कि दिन में 2 से 2.5 लीटर का पानी और अधिक कैल्शियम युक्त खाना जितना आप ऐड कर सकते हैं उसमें, वो डाइट में अपना स्टार्ट करना है माँ का। और कभी कभी दिक्कत यह आती है कि सही से लैचिंग ना होने से, मतलब सही से पोजीशन ना करने की वजह से भी वो सही से दूध नहीं पी पाता है बच्चा, तो उसके लिए भी हमारे सभी सेंटर्स पे, सभी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, सभी जगहों पे फीडिंग काउंसलिंग के लिए ANM होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है लैचिंग से लेकर के, तो आप हमारे सभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो हमारी फीडिंग काउंसलिंग ANM है, जो घर घर आकर भी सिखाते हैं, आप उनके पास जा कर के

0: सीख सकते हैं। धन्यवाद
1: जी, आशा है कि उन्होंने जो प्रश्न किया था उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा। तो डॉक्टर प्रतिभा, नवजात शिशु के जन्म के कितनी देर बाद उन्हें स्तनपान देना चाहिए?
0: देखिए, जन्म के पहले घंटे जो हम मानते हैं कि बहुत ही प्रीसियस आवर्स हैं, पहले एक घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। इसे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। इसे शिशु को जो पहला गाढ़ा मिल्क, यानी कि जिसे हम कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, वो मिल जाता है। माँ के दूध जल्दी उतरने शुरू हो जाता है और माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव भी होना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान कराना।
1: जी, अक्सर ये कहते हैं, बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग भी ये कहता है कि जो पहला गाढ़ा दूध है वो बच्चों को पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पहला गाढ़ा दूध, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
0: देखिए, पहला गाढ़ा दूध जिसे हम कोलोस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके से शिशु का पहला प्राकृतिक टीका मान के चलिए इसको आप सभी। इससे हमें बच्चे को एंटीबॉडी, प्रोटीन, विटामिन और इम्यूनिटी जो है, ये इस तत्व से इतना भरपूर है कि ये हमें हमारे बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, आंतों को मजबूत करता है और एक नवजात शिशु में जो इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाए रखता है। इसीलिए इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। कई मिथ में होता है कि इस पहले गाढ़े दूध को निकाल करके वो अन्य आगे का दूध देना प्रेफर करते हैं, पर ये मिथ है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कोलोस्ट्रम हमारे बेबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: जी, मतलब एक शिशु के स्वस्थ विकास के लिए, हर तरह से उसे स्वस्थ रखने के लिए जो पहला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत ही अनिवार्य है।
0: बहुत ही अनिवार्य है
1: जी। तो डॉक्टर, जो शुरुआती के 6 महीने में क्या केवल माँ का दूध दिया जाना चाहिए व उसके लिए क्या पर्याप्त होता है, या पानी भी देनी चाहिए, क्योंकि लोगों में अलग अलग तरह की धारणा है? जी
0: जी हाँ, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त है। इस दौरान बहुत मिथ है कि हम बच्चे को शहद दे देते हैं, घुटी दे देते हैं, गाय का दूध पिला देते हैं, या इस आइलैंड पे जैसे हमने देखा है ग्रैब वाटर दे देते हैं बच्चे को, पर ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे को इन्फेक्शंस हो सकते हैं। माँ के दूध में पर्याप्त पानी और सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसके अलावा कुछ अन्य चीज़ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चे को।
1: माँ का दूध शिशु के लिए एक सर्वोत्तम आहार, जैसा आपने अब तक हमें समझाया। तो जो हमारी बहनें हैं, जो माँ हाल ही में माँ बनी हैं या माँ बनने वाली हैं, तो हम चाहेंगे आप उन्हें समझाएं कि इसे हम सर्वोत्तम आहार क्यों मानते हैं?
0: देखिए, माँ का दूध डायरेक्ट बेबी तक जा रहा है, तो इसे साफ, सुरक्षित, ताज़ा, आसानी से पचने वाला दूध होता है। इससे शिशु की उम्र के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होते हैं। यह संक्रमणों से बचाव करता है, मस्तिष्क के विकास में मदद करता है और बच्चे के स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है। तो ये सर्वोत्तम आहार है हमारे बेबीज़ के लिए, तो इसको ज़रूर, इसको बिल्कुल मिस ना करें। समय पे पिलाना है और किसी मिथ का कारण
1: मित
0: नहीं,
1: मित को जो है सही मानकर नहीं चलना है,
0: सही
1: डॉक्टर
0: मान
1: की सलाह लेना ही बहुत ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर प्रतिभा, जो है कि पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक क्षमता हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, और आज के समय में सभी जो है अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की कोशिश में लगा है ताकि वे बीमारी से बच सके। तो एक शिशु के लिए पोषक तत्व और रोग प्रतिरोधक जो गुण होते हैं वो माँ के दूध में कितना होता है?
0: देखिए, माँ के दूध में प्रोटीन, फैटी एसिड्स, विटामिन, जो हमारे आजकल सभी हॉर्लिक्स और सभी जो जितने भी प्रोटीन पाउडर्स हैं, सभी आजकल DHA के लिए बड़ा ही अपने आप को कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसमें DHA ऑलरेडी है, एंटीबॉडी, इम्यून कोशिकाएं हैं, अन्य जैव सक्रिय तत्व होते हैं जो बच्चे को संक्रमण से बचाता है। और उन ये एक नेचुरल आपका एक ऐसा दूध है जिसमें आपको सभी तरह के तत्व मिल रहे हैं जो आपको आगे जाने वाली बीमारियों से बचाएगा। बच्चे को एनीमिया, आगे चल के डायबिटीज़, मोटापे, इन सब से लड़ने की क्षमता देता है। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी, डॉक्टर प्रतिभा जी, ये प्रश्न से पहले एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
2: हाँ जी,
1: हेलो जी, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार मैडम जी।
1: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं उग्रबन से बोलता हूँ मैडम, सुकुमारन।
1: जी सुकुमारन जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है?
2: हाँ मैडम जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जो कोई किसी की ऐसा होता है कोई कारणवश कोई बच्चे

0: माँ छोड़ कर चला जाता है, नहीं तो उसका माँ का मृत्यु हो जाता है। तो बच्चों को कैसा पाला जाए, उसको क्या पिलाया जाए, तो कैसा रखा जाए?
1: देखिए, ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है कि किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो
0: ऐसा
1: इसमें
0: हुआ है मैडम, हमारा यहाँ हुआ है इसीलिए जी।
1: ऐसे में कभी कभी परिवार की औरतें जिनमें जिनके परिवार में कोई न्यूली कोई माँ बनी है, कोई नवजात शिशु है, ऐसे में हम प्रिफर करते हैं कि हम उनका ब्रेस्ट फीड उस बच्चे से शेयर कर लें, ये सबसे है। नहीं तो फिर हम इसके लिए यही बोलेंगे, हमारे ह्यूमन मिल्क बैंकिंग ही हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हमें प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई में ह्यूमन मिल्क बैंकिंग होता है, सो वहाँ से हम बच्चे के लिए दूध ले सकते हैं। ये इस तरीके की मदद वो प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं से माँ का मिल्क मिल ही जाता है।
2: जी
1: धन्यवाद।
2: जी तो डॉक्टर प्रतिभा, हम जो है जो बच्चे की जो माँ की दूध जो पहले दिन से जब हम बच्चे को पिलाते हैं, उसके बाद किन बीमारियों से बच्चे बचते हैं, किस तरह से पोषक तत्व तो उन्हें मिलते हैं, इस बारे में
1: देखिए,
2: हम चर्चा कर
1: स्तनपान
2: रहे थे।
1: बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें डायरिया जिसे दस्त बोलते हैं, निमोनिया, कान की एलर्जियाँ, एलर्जी जो आपके होते हैं, इम्यूनिटी को प्रदान करना बच्चे को आगे चल के, जो हम आजकल देख रहे हैं मोटापा होना, आजकल डायबिटीज़ बहुत ही अर्ली एज में, बहुत ही यंग, पहले हम मान के चलते थे 40-45 के बाद में हमें डायबिटीज़ देखने को मिलती थी, आजकल हम देखते हैं कि छोटी सी उम्र में ही डायबिटीज़ हो जाती है बच्चों को। सो कई अन्य गैर संचारी रोगों से जोखिम को भी कम करता है, तो माँ का मिल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए।
2: जी डॉक्टर प्रतिभा, एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे का जन्म वक्त से पहले हो जाता है, 8 महीने में या 9 महीने में, ऐसे समय में क्या है, बच्चे की स्थिति कैसी होगी, कि क्या उन्हें हम उस समय भी माँ का दूध दे सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा प्रीमेच्योर है, माँ की भी हालत ज़रा सा गंभीर है, ऐसे समय में मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की सेहत को बचाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: देखिए, माँ का मिल्क ऐसा नहीं है कि बच्चा इमेच्योर है तो अभी हम नहीं देंगे, बिल्कुल समय से पहले अगर जन्मे जो शिशु हों उनको माँ का दूध और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
2: जी
1: यदि बच्चा सीधे स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या करते हैं कि माँ का निकाला हुआ दूध दिया जा सकता है, हमारे पास पैलेट डे होता है, दिए जैसा एक दिखने वाला एक बर्तन होता है जिससे हम दे सकते हैं, क्योंकि कम वजन का और अर्ली बच्चा पैदा होने से क्या होता है कि कभी कभी मदर के जो निप्पल्स होते हैं वो सही से आकार नहीं ले पाते, फ्लैट होते हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि माँ का दूध निकाल करके उन्हें उस बर्तन से, हम चम्मच से, स्पून चम्मच से, हम पैलेडे से वो दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये समय से पहले जन्मे शिशुओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल ना रोकें, कोई मिथ का पार्ट ना बने, ये बच्चे को गंभीर संक्रमण और आंतों की बीमारी का खतरा कम करता है।
2: जी डॉक्टर, जैसे कि जब बच्चा कुछ महीनों, जैसे 6 या 7 महीने का होता है या 8-10 महीने का होता है, तो कुछ अपने साइन लैंग्वेज से अपनी बातें अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता है, पर जब एक नवजात शिशु कुछ महीने का है और एक माँ उसे स्तनपान उसे करा रही है, तो ऐसे में हम कैसे समझें, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो स्तनपान हम उन्हें करा रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यदि बच्चा अच्छी तरह से स्तनपान कर रहा है तो दिन में लगभग 6 से आपको ऑब्जर्व करना है कि बच्चा मेरा 6 से 8 बार से या उससे अधिक बार पेशाब कर रहा है, उसका वजन नियमित रूप से बढ़ना, और स्तनपान के बाद जनरली जो हम देखते हैं कि हमारा बच्चा संतुष्ट दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा रोएगा नहीं, तो समझिए कि आप पर्याप्त रूप से दूध पिला पा रहे हैं बच्चे को।
2: जी मतलब एक छोटी सी बात है कि हमें बस अपने बच्चे पे ध्यान देना है कि उसका मोटापा बढ़ रहा है या बार बार वो पेशाब कर रहा है, ये चीज़ों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है। जी तो डॉक्टर, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो स्तनपान कैसे कराए, जैसे हमारे द्वीपों में क्या है, यहाँ पे एक माँ कहीं पर उनका जो अपना घर है बच्चे के साथ और अपना ऑफिस जाती है तो उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा है, अगर वो दूध को स्टोर करके जाती है तो उसकी विधि क्या होगी, कितनी देर तक वो फ्रेश रहता है?
1: देखिए, विद इन अ 24 आवर्स तक आप अपने आप माँ का निकाला हुआ दूध एक साफ़ और ढके हुए पात्र में, जनरली आप प्लास्टिक बर्तन यूज़ ना करके आप हमेशा स्टील या आप ग्लास की स्टोरेज रख सकते हैं उसमें, सो परिवार के सदस्य उसे कप या चम्मच से बच्चे को दे सकते हैं, जो मैंने बोला कि आपका दिया जैसा एक बर्तन होता है पैलेट है, या आप स्पून ऑप्शन में रख सकते हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे में, 1.5-1.5 घंटे में बच्चा

0: दी अपना रोकर बता देता है कि उसे मिल्क की ज़रूरत है, तो आप उसको धीरे धीरे पिला सकते हैं उसको। और कार्यरत जो स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण, पर्याप्त सहयोग की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि सभी जगहों पे एक फीडिंग रूम जरूर होना चाहिए जहाँ पे वो माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सके।
1: जी, अगर माँ को सर्दी, बुखार या और कोई संक्रमण हो जाए तो क्या ऐसे स्थिति में स्तनपान जारी एक माँ रख सकती है?
0: बिल्कुल, ये बहुत ही मिथ है हमारे विश्व में कि जनरली माँ को अगर सर्दी खांसी कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग उसका फीड रोक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अधिकांश सामान्य संक्रमणों में स्तनपान जारी रखना होता है। इससे क्या होता है कि वो संक्रमण में जो माँ के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी बच्चे को मिल जाती है, तो कभी भी माँ को अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इवन माँ को अगर एक अधिकांश अगर लगता है कि एचआईवी जैसा रोग भी है,
1: जी
0: गंभीर रोग भी है
1: जी
0: एचआईवी जैसा,
1: जी
0: तो भी जो आपके रेट्रोवायरल जो मेडिकेशंस हैं उसके अंतर्गत आप उसको 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। अगर माँ को टीबी की बीमारी भी है तो टीबी की बीमारी में भी आप माँ को जो आपकी टीबी की मेडिकेशन स्टार्ट करते ही आप उसको एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क 6 महीने तक देना ही है। आप डायरेक्ट मत दीजिए पर एटलीस्ट एक्सप्रेस करके अपने बर्तन में प्रिजर्व करके उनको दे सकते हैं। तो कभी भी माँ का दूध नहीं रोकना है जब तक कि कहीं माँ कीमोथेरेपी या किसी इम्यूनो सप्रेसिव कोई ऐसी ड्रग्स पे ना हो जो बच्चे के लिए भी जानलेवा हो सकती हैं, तो ऐसी ड्रग्स पे के चलते आपको ब्रेस्ट फीड रोकनी है, वरना और किसी बीमारी में स्तनपान रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
1: जी, डॉक्टर प्रतिभा, अब तक आपने जो माँ के दूध की जो महत्वता है वो हमें हमें समझाया कि कितना ज़रूरी है। एक बच्चे को पोषक तत्व मिलता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, कई तरह के बीमारियों से बचाता है माँ का दूध। अब ये हमें बताया कि स्तनपान से माँ को क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं?
0: देखिए, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीटोसिन एक भावनात्मक जुड़ाव तो करता ही है माँ और बच्चे के बीच में, साथ में वो जो यूट्रस का साइज़ जो इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके साइज़ को भी आकार में लाने में मदद करता है। स्तनपान हमारे ओवरी और जो यूट्रस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इससे भी माँ को बचा के रखता है, वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है, और माँ और बच्चे के बीच में जैसा कि मैंने कहा कि एक भावनात्मक, एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो क्रिएट करता है।
1: जी, जब एक माँ बच्चे को फीड करती है तो ऐसे समय में किस तरह की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, और ऐसी कौन सी समस्या होगी जब हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी होगी?
0: देखिए, माँ को स्तनपान के टाइम पे क्योंकि वो फीड करा रही है और हर 2-2 घंटे में उसको जनरली फीड कराना ही पड़ता है, तो ऐसे में माँ को संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना ही है, कैल्शियम और आयरन रिच डाइट लेनी ही पड़ेगी। लिक्विड्स जो आपका 2 से 2.5 लीटर का एक लिक्विड है तरल, अपने आप को हाइड्रेट रखना, आयरन रिच डाइट, आपका कैल्शियम रिच डाइट, ये अपने खाने में उसको सम्मिलित करना ही होगा। पर्याप्त आराम करने की ज़रूरत है उसको, और धूम्रपान शराब बिना किसी जो आपका बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा से बचना, और हम चाहते हैं कि जब भी गर्भवती महिला जब बच्चा होता है तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए उनके उसके परिवार और समाज से कि उससे माँ को हेल्प मिले।
1: जी, तो एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो,
1: जी, गुड मॉर्निंग
2: गुड मॉर्निंग मैम, मैं हेडो से पूजा बोल रही हूँ।
1: जी। पूजा जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
0: गुड मॉर्निंग, बताइए।
2: डॉक्टर, मेरा ये सवाल है कि कई बार माँ जब बच्चे रोता है तो उन्हें बार बार दूध पिलाती है, तो ऐसे में माँ को कैसे पता चले कि बच्चे का पेट भर चुका है?
0: देखिए, बच्चा जब दूध पी लेता है तो एक बहुत ही सेटाइटी वाली एक फीलिंग आती है, एकदम प्लेफुल मूड में, एकदम दिखता है कि उसके उस पे चेहरे पे एक चैन होता,
1: संतुष्टि दिखती
0: संतुष्टि
1: है। जी
0: संतुष्टि दिखती है। तो हमेशा
2: जी
0: बच्चा जनरली ऐसा नहीं है कि टाइम क्लॉक के हिसाब से, हमारे 2 घंटे की क्लॉक के हिसाब से ही स्तनपान करता है। हमेशा क्या होता है कि बच्चे को जब भूख लगती है वो तो खुद ही रोना शुरू कर देता है, और ऐसे में जब आप फीड कराते हैं तो 2 से 3, एक दो वजह ही होते हैं। एक होता है कि बच्चे ने डाइपर वेट कर लिया है, इस वजह से बच्चा क्राई करता है। दूसरी वजह होती है कि जब उसको भूख लगी होती है, तो हमेशा जो हम मान के चलते हैं कि हर 2-2 घंटे में हम अलार्म क्लॉक लगाएंगे और बच्चे को अपने हिसाब से पिलाएंगे, कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 1.5 घंटे

0: में भी बच्चे को भूख लग जाती है, 2 घंटे में, कभी कभी बच्चे को 3 घंटे में भी लगती है। तो हमेशा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने बच्चे को, आपको 2 से 4 दिन के बीच में ही पता चल जाता है। माँ का ऑब्जर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने बच्चे को लेकर के। तो आप जब देखेंगे कि आपने दूध पिलाया रोते टाइम बच्चे को, और एक संतुष्टि जो उसके चेहरे पे दिखाई देगी, उससे आप जान जाएंगे।
1: थैंक यू।
2: जी तो डॉक्टर, जो बार्बिंग जो कराना होता है फीडिंग के बाद में, क्योंकि कई तरह की माएँ होती हैं जो इन्हें इस बारे में पता नहीं होता है, बच्चे को गैस की समस्या हो जाती है, पाचन की समस्या हो जाती है, किस तरीके से बच्चे को फीड करने के बाद में उन्हें बार्बिंग कराना चाहिए और
0: देखिए
2: कितना
0: देखिए
2: ज़रूरी है?
0: बर्पिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम आम भाषा में डकार दिलाना भी कहते हैं। ये बच्चे के लिए बहुत है, क्योंकि बच्चे का जो ईसोफेगस है, जिसे हम ये बहुत छोटा सा होता है। अगर आप तुरंत दूध पी कर पिला कर बच्चे को लिटा देते हैं, तो ऐसे में हमारी जो ईसोफेगस के बराबर में जो हमारी सांस की नली होती है, उसमें भी दूध जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो बर्पिंग कराना यानी डकार दिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आप कई तरीक़ों से डकार दिला सकते हैं बच्चे को। एक है सबसे आसान तरीका कि आप बच्चे को कंधे से लगा करके उसको अच्छे से सहलाएं, तो उससे भी बच्चा 2 से 3 बार डकार लेता है। एक है कि आप अपने लैप पे बच्चे को रखें, उसकी चिन को स्ट्रेट करके, स्पाइन स्ट्रेट करके चिन को पकड़ के अच्छे से पीछे की तरफ सहलाएं। उससे भी बच्चा बिठाने वाली पोजीशन में भी और आपके कंधे पे सहलाने वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन पे ही बच्चा अच्छे से डकार ले लेता है। बर्पिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी सभी माताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चे को जितनी बार आप दूध पिलाते हैं, उतनी बार बर्पिंग यानी डकार जरूर दिलाएं अपने बच्चे को।
2: जी, जितना स्तनपान ज़रूरी है उतना ही जो बर्पिंग कराना भी उतना ही
0: उतना
2: आवश्यक
0: ही
2: है।
0: आवश्यक
2: जी,
0: है।
2: तो डॉक्टर प्रतिभा, ये बताइए कि जब एक स्त्री माँ बनती है, उसके बाद बच्ची को फीड करती है, तो क्या फीड करने से पहले प्रेगनेंसी के दौरान कुछ पहले से प्रिपेयर करना होता है कि हमें डिलीवरी के बाद बच्चे को फीड करना है, और जब बच्चा हो जाता है तो जब भी वो फीड करती है तो कोई ऐसे एहतियाती उपाय उसे बरतने चाहिए?
0: जी बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि आप जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, आप इमिडिएट, जो मैंने हमने पहले अपने प्रश्न में भी अपने यही उत्तर दिया था कि पहले फर्स्ट आवर्स में ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप माँ और बच्चे की बॉन्डिंग और एक फीड कराना शुरू कर दीजिए। पर ऐसे में किसी मिथ का पाठ पढ़ना कि अभी हम ब्रेस्ट को धो करके गर्म पानी से सहला करके या जो भी करके हम उसको खिलाएंगे, इस सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक साफ़ कपड़े से अपने ब्रेस्ट को क्लीन करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितने जल्दी से जल्दी हो सके उसका पार्ट बन सकते हैं। पर ऐसे में वेट कराना बच्चे को, मैं अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ऐसे में, कि एक बार वार्ड राउंड के दौरान मैंने नोटिस किया कि एक मदर, जो बच्चे को डिलीवर हुए 7 से 8 घंटे हो चुके थे, तो जब हमने देखा कि उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराया, हमने बच्चा मदर साइड शिफ्ट कर दिया था क्योंकि बच्चा एकदम नॉर्मल डिलीवर हुआ था, तो हमने नोटिस किया राउंड के दौरान पे वहाँ पे कि अभी घर से वो लोग वेट कर रहे थे, उसके जो साथ वाले अटेंडेंट थे वो ये वेट कर रहे थे कि वो घर से गर्म पानी आएगा, फिर वो ब्रेस्ट को धोएंगे और उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में बच्चे को शुगर कम होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और भी जो आपका जो पहला इम्पॉर्टेंट गाढ़ा मिल्क कोलोस्ट्रम, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो मिस हो गया बच्चे का। तो ऐसा बिल्कुल किसी मिथ का पार्ट नहीं बनना है। जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप साफ़ कपड़े से पोंछ करके अपना स्तनपान शुरू करना चाहिए।
2: जी, तो डॉक्टर, जब 6 महीने के बाद बच्चे को जो लाइट फूड शुरू करते हैं, जो पूरक आहार हम शुरू करते हैं, वो कैसे शुरू करें, क्या क्या देना चाहिए, और उस समय में स्तनपान जारी रखना चाहिए और कितने समय के बाद देना
0: देखिए
2: चाहिए?
0: स्तनपान जनरली 2 वर्ष तक आप बच्चे का जारी रखना चाहिए। जब तक बच्चा सही से पी रहा है आप रखिए, पर उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जो ना फीड होता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि हम दाल चावल हल्का कम मसाले वाला और खिचड़ी से हम कर सकते हैं। जनरली दाल, हम धुली हुई दाल की, कोई भी धुली हुई मूंग मसूर की धुली हुई दाल, उसमें थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 स्पून घी के साथ हम बनाएं बनाया हुआ ये आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 2 टेबल स्पून आप उसमें कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बच्चे को कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये बनाया हुआ खाना आप घर का बनाया होम फूड फीड जो भी है आप करा सकते हैं।

0: बाहर के चिप्स कुरकुरे इन सब से दूर रखें, क्योंकि ये हमारे जो अधिक मात्रा में सॉल्ट जिस जो यूज़ किए हुए हैं, जो बच्चों की इमेच्योर किडनी पे इफ़ेक्ट करती है, तो इससे दूर रखना है अपने बच्चों को। रिफाइंड शुगर, चॉकलेट्स और इन सब से दूर रखें।
1: जी डॉक्टर, समाज और परिवार की जिम्मेदारी के बारे में हमें बताइए, उनका सहयोग के बारे में बताइए कि एक महिला, एक माँ स्तनपान अगर वो कराती है तो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?
0: देखिए, माँ को एक भावनात्मक सहयोग की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ 9 महीने में और जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे भावनात्मक स्ट्रेस से गुजरती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक सहयोग देना, एक परिवार का सहयोग होना, उसको आराम दिलाना, पौष्टिक आहार देना, अनावश्यक सलाह भ्रांतियों से बचे रहना, कोई मिथ का पार्ट ना बनना, और जनरली काम काजी महिलाएं जो अपने बच्चे को घर पर छोड़कर जाती हैं, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि वो अपने बच्चे को काम के टाइम दौरान, जो उनको उनके दिमाग में ये बात रहती है, उनको सहयोग करना। तो मेरे पूरे परिवार से यही अनुरोध है कि इस समय पे जो एक महिला है उसको पूरी तरह से सहयोग करें, उसके आराम का, उसके खाने का ध्यान रखा जाए।
1: जी, ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार और समाज एक माँ को सहयोग देगा बच्चे को स्तनपान कराने के लिए, तो बच्चे का भविष्य बहुत ही सुधरेगा।
0: जी,
1: जी, तो डॉक्टर प्रतिभा, अंत में जो हमारी बहनें हमें सुन रही हैं, जो नई नई माँ बनी हैं, जैसे कि हमने पहले कहा जो माँ बनने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: देखिए, मेरी सभी माताओं और उनके परिवार के लिए यही संदेश है कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान जरूर शुरू करें। पहले 6 महीने केवल माँ का दूध ही दें। 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक भी स्तनपान जारी रख सकते हैं। स्तनपान बच्चे का अधिकार है, माँ की शक्ति और स्वस्थ समाज की नींव है। सो आइए हम सभी मिलकर हर बच्चे को जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत दें और स्तनपान जरूर दें अपने बच्चे को।
1: जी, तो डॉक्टर प्रतिभा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और स्तनपान के संदर्भ में इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर सुन रहे थे। विषय था स्तनपान, स्वस्थ जीवन की नींव। विशेषज्ञ थी सीनियर रेसिडेंट इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रतिभा। तकनीकी सहयोग दिया एन दंडापानी और सौरव दास ने, तथा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी जयशीला।

आठ बजने वाले हैं। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में

0: उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और

0: सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ
1: यशवीन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के बुक पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, TRF ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात
4: हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को

सुगम संगीत के कार्यक्रम में ये पहली गज़ल थी फरीदा खानम की आवाज़ में। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

कार्यक्रम में अगली गजल की पेशकश गुलाम अली की आवाज में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप फरीदा खानम, मेहदी हसन, गुलाम अली और इकबाल बानो की आवाज़ों में चंद गज़लों का लुत्फ़ उठा रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं श्रोताओ, अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आसमान से भी ऊंचा। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है राजेश रोशन ने।

मोहम्मद अजीज़ और साधना सरगम की आवाज़ों में ये था कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म आसमान से ऊंचा से। अब आपको सुनवा रहे हैं दूध का कर्ज, फिल्म का ये नगमा अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में, अनु मलिक के संगीत निर्देशन में तैयार। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं।

0: Seema? Seema?
1: उठो.
2: क्या हुआ?
0: चेकअप के लिए जाना है ना.
2: सोने दो ना.
0: उठो.
2: अगले हफ्ते चल पड़ते. थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
3: गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके.
4: समय का मोल
0: HIV पे कंट्रोल.
3: गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं.

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने, और कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं एस जानकी और मुन्ना अजीज़ के स्वरों में आखिरी रास्ता फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हमारा खानदान। श्रोताओं, लीजिए इस फिल्म से सुनिए शब्बीर अहमद के स्वर में ये नगमा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार, गीत के बोल फारूक कैसर ने लिखे हैं।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुने अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में पैसा ये पैसा फिल्म का ये गीत। गीतकार है वर्मा मल्लिक व संगीतकार उषा खन्ना।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत श्रोताओं आपने अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में सुना। फिल्म थी पैसा ये पैसा, और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने यहीं पर संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओ, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कर्नाटक शैली में सुधा रघुनाथन का गायन। इनके साथ वॉयलिन पर के शिवरमन ने, मृदंगम पर तिरुवरूर विद्यनाथन ने, घटम पर एस कार्तिक ने तथा मोरसिंग पर आर रमन ने संगति की है। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में आइए सुने सुधा रघुनाथन का गाया राग नाटका प्रिया, जो आदिताल में निबद्ध है।

0: शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आप कर्नाटक शैली में सुधा रघुनाथन का गायन सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अपनी पहली सभा को जारी रखते हुए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म दिल जले से। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत अनु मलिक का है। गायक कलाकार है कुमार सानू और आदित्य नारायण।

लीजिए अब सुनिए फिल्म काबिल का ये गाना, जिसे गाया है रफ्तार और पायल देव ने। गीतकार अनजान तथा संगीत राजेश और रोशन का है।

अब हम आपको सुनवाते हैं जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में फिल्म जॉली एलएलबी 2 का ये गीत, गीत जुनैद वासी का तथा संगीत चिरंतन भट्ट का।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए सुनिए गुलजार की गीत रचना। गायक है अरिजीत सिंह, फिल्म है रंगून।

लीजिए अब सुनिए फिल्म कमांडो 2 का ये गाना। कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मन्नन शाह ने, गायक है अमित मिश्रा।

अमाल मलिक और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में सुनिए शब्बीर अहमद की गीत रचना। संगीत अमाल मलिक का है तथा फिल्म है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

लीजिए अब सुनिए यसीर देसाई और शाह तिरुपाली का गाया फिल्म मशीन का ये गीत, गीतकार अराफत महमूद तथा संगीत तनिष्क बाख्शी का है।

अब हम आपको सुनवाते हैं अरमान मलिक का गाया फिल्म नूर का ये गीत। मनोज मुत्तशीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अमाल मलिक ने।

लीजिए अब सुनिए खुर्राम इकबाल का गाया फिल्म मात्र का ये गाना। एस के खालिश के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है।

लीजिए अब सुनिए जसबीर जस्सी, सोनिया शर्मा और आकाश सिंह की आवाजों में फिल्म स्वीटी विट्स एनआरआई का ये गीत। गीत रचना देवेंद्र खारिफ की तथा संगीत जयदेव कुमार का।

लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह और निकिता गांधी का गाया फिल्म रब्ता का ये गाना। इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया।

प्यार किया नहीं जाता इस फिल्म में सुनिए अनुराधा पौडवाल को। प्रवीण भारद्वाज के बोल को सुरों में पिरोया है आनंद राज आनंद ने।

अभी आप कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म सरफरोश में सुन रहे थे। समीर के गीत थे, संगीत जतिन ललित का था। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अभिजीत और अलका याग्निक के गाए फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के एक गीत के साथ। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

लीजिए अब सुनिए AR रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार महबूब की गीत रचना। फिल्म है दिल ही दिल में, गायक है अभिजीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप फिल्म पुकार में सुन रहे थे। मजरूस और जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने।

अलका याग्निक और अभिजीत को सुनते हैं फिल्म अचानक में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और राकेश पंडित की आवाज़ों में सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना। विजू शाह का संगीत है तथा फिल्म है बुलंदी।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत अतीत।

ये रात फिर ना आएगी कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है इस फिल्म से। आशा भोसले और मीनू की आवाज़ें हैं, गीत कश्मीरी का है तथा संगीत ओपी नैयर का।

घुंघरू की आवाज़, इस फिल्म में सुनिए सुरेश वाडेकर को। विजय आनंद के गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में सुनते हैं कमर जलालाबादी की गीत रचना। फिल्म है ये दिल किसको दूं, संगीत इकबाल कुरैशी का है।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था, एयरपोर्ट का निर्माण, और दूसरी तरफ मेरे यहां के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज

0: 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है, वहीं कोलकाता में 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेंगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन 2 श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Aluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Pawan Kalyan and other dignitaries. The Prime Minister inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. Mr. Modi also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by the officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant culture of North Andhra. We'll now go live to the Prime Minister's address.
2: నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ద్వారా ప్రయాణించే ప్రతి ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారి పేరుతో ప్రజాసేవకు దేశ సేవకు కూడా స్ఫూర్తి పొందుతారని తెలియజేస్తున్నాను.
3: సాథియో, బీతే 12 ఇయర్స్ మే దేశ్ కే ఏవియేషన్ సెక్టర్ నే అసాధారణ ప్రగతి కీ. 2014 తక్ దేశ్ మే కేవల్ 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
1: Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center or Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892. When he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लीजिए अब सुनिए सुमना रे की आवाज में दाग का कलाम।

0: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुमना राय की आवाज़ में चंद गज़लें सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, पहला फरमाइश हमने लिया है डॉलीगंज से सुनीता, पिंकी और रंजीत का। ये सुनना चाहते हैं फिल्म आ अब लौट चले का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, शब्बीर कुमार, विजेता, सौत खान और साथी ने। गीत को लिखा है समीर ने तथा संगीत नदीम श्रवण का है। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अनजान के लिखे गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म है डॉन। गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है भातो बस्ती से प्रियंका और संतोष ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

अगले गीत के लिए हमें संदेश भेजा है डेयरी फॉर्म से गीता और मनजीत ने। ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म लोफर का ये गाना। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

हेडो से अभिषेक और विद्या सुनना चाहते हैं फिल्म कुली का ये गाना। गायक कलाकार है शब्बीर कुमार और अनुराधा। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की गीत रचना को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म है मेरा गांव मेरा देश। गीत को सुनने को पसंद

आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 ईयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जिनकी नींव रखी गई है वो सारे प्रोजेक्ट

0: स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना।
1: स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना।

0: 2,691.50 रुपए और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में एक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शा आती हैं।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र
3: हम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से 1 से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकर

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के

0: इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये है आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 और 54 सेकंड हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: दोस्तों, आज हमने इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपको सुनवाए उन फिल्मों के नाम हैं हम किसी से कम नहीं, इम्तिहान, हम आपके दिल में रहते हैं, राजा हिंदुस्तानी, ये रास्ते हैं प्यार के, बलमा, रंग और दिल का क्या कसूर। इसी के साथ ही हमारा ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में गाया हुआ फिल्म उपकार का गाने के साथ। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण की गीत रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है तथा फिल्म का नाम है मन मंदिर।

लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार कैफी आज़मी की गीत रचना। फिल्म है हकीकत, गायक है मोहम्मद रफ़ी।

किशोर कुमार की आवाज में अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पिया का घर का ये गाना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, अभी आप कुमार सानू की आवाज में फिल्म वर्दी का ये गीत सुन रहे थे। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी की गीत रचना। गायक है किशोर कुमार तथा फिल्म है पिया का घर।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब संपन्न होता है। हंड्रेड पॉइंट नाइन मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: करके आए हैं। संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप सेन साहब। पिछले भाग में हमने आपके कुछ गीतों पर, आपके संगीत पर चर्चा की थी, तो आइए आज फिर से आपकी संगीत यात्रा पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिलीप साहब, बात हो रही है आपकी संगीत रचना पर। आपने इतने गीत अब तक बना दिए हैं, तो 90 के दशक में आप लोग जब लाइव म्यूजिशियंस और क्रिएटिव सिटिंग्स के जरिए गाने बनाते थे, हाँ, और किसी एक साज वाले से गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था, इस तरह से काम हुआ है, इसमें क्या तकलीफें आती थी?
2: देखिए, आज जो टेक्निक है ये क्लिक पे रिकॉर्ड होता है।
1: हाँ,
2: पहले वो क्लिक ले लेते हैं, टक टक टक टक, प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो वो ऑलरेडी बज चुका है। अब उसको सुन के लोगों को बजाना है, समझ गए?
1: जी।
2: हमारे वक्त ऐसा नहीं होता था।
1: जी।
2: हमारे वक्त क्या, जैसे अभी गाना शुरू हुआ, वो जैसे गोरी चोरी चोरी कहाँ जाए पता, तेरा टाका बिगड़ा हमको है पता, कैसे आंखें लड़ी कैसे बातें बड़ी, कैसे चुभा तुझे कुछ हुआ तुझे, हमको ना बनाना रे, हमसे ना छुपाना रे, गोरी चोरी चोरी मेरी नींद गई मेरा चैन गया, कब जब होश न था कुछ बात हुई हाय मैं, ये जैसे गया।
1: हाँ।
2: अब आंखों की बनी तनम को बहुत भाग गई, राजन से मिलके घड़ी दो घड़ी में मैं देखो चली आ गई, कहां लाली गई। अब ये जो आता है,
1: हाँ,
2: यहां से क्या होता है, हल्का सा टेम्पो बढ़ जाता है जब लाइफ होता है ना, डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा, चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का चिंता का। तो आज अगर हम लोगों ने जो लाइफ म्यूजिक बजाए हुए हैं उनको अगर आप क्लिक में लोगे वो हिला हुआ लगेगा, क्लिक पे आ नहीं था। तो ये जो टेक्निक थी हमारी, तो जैसे वो गया, अगर किसी ने बढ़ाया रिदम तो बजाते बजाते एक जोश आता है ना अंदर से,
1: बिल्कुल।
2: तो जैसे आपने बजाया बजाया, तो जैसे जोश आया तो कभी कभी कोई ओवर जोश हो जाता था, अरे कट कट कट कट कट, दोबारा लेते हैं, तो इस तरीके से किसी ना किसी की हो जाती थी। और अक्सर क्या है कि जैसे कुछ फ्रेज लोग भूल जाते थे
1: जी,
2: तो हमारे वक्त जो लाइव म्यूजिशियन होते थे उसमें हल्का सा उतार चढ़ाव रहता था, टेम्पो की बात कर रहा हूं। आज क्या, क्लिक के ऊपर है, वो हिलता नहीं है, इसीलिए आज जो सिंगर है ना वो बहुत बंधा हुआ गाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, एक एक से दो बार एक्स्ट्रा रखते हैं उस फॉर द सिंगर, क्योंकि जैसे मैंने गाया वो गाएगा नहीं तो उसको थोड़ी जगह चाहिए कि सांस लेने के लिए या फील डालने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा दो बार रख लेते हैं। फिर उसका जितना उसने गाया हमको जहां तक उसका चाहिए चाहिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बार हुआ वो हम कट करके वापस ज्वाइंट कर देते हैं। आज ये फैसिलिटी है। तो उसमें गाने में हम लोग ये कोशिश रखते हैं कि बार की, अमूमन हर आदमी को ये टेक्निक नहीं पता,
1: नहीं आती है। जी जी जी
2: जी।
1: तो कोई एक गाना कितने दिनों में रिकॉर्ड हो जाता था उन दिनों, 90s की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक गाने को रिकॉर्डिंग करने में आपको कितना दिन लगता था, या एक कलाकार कितना समय लेता था एक गाने की रिकॉर्डिंग?
2: एक दिन।
1: अच्छा,
2: एक दिन, एक मैं एक दिन में दो दो गाने किए मैंने। मैं एक फिल्म कर रहा था वो एक दिन में विद सिंगर के, पहला गाना जब किया तो उसमें मोहम्मद अजीज जी और अलका याग्निक जी विद कोरस ऑर्केस्ट्रा, मतलब कम से कम 100-125 म्यूजिशियन कोरस के साथ में, और सिंगर अपने रूम में, तो अलका जी और अपना ये मोहम्मद अजीज, वो 11:30 बजे के रिकॉर्डिंग करके 3:30 बजे 3:30 बजे तक उनका पैकअप हो गया। 4 बजे दूसरी शिफ्ट में आशा जी, अमित कुमार, वो भी लाइव, 10:30 तक उनका भी पैकअप हो गया। तो कभी कभी हमने दो भी गाने किए हैं
1: जी।
2: और जब थोड़ा जब सक्सेस आ गई तो एक गाना 2 दिन में भी किए हैं।
1: हाँ जी।
2: तो वो ऐसा नहीं है, वो 2 दिन में तो इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन में पहले दिन फुल ऑर्केस्ट्रा हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, क्योंकि बाद में टेक्नो जो साउंड आया ना ये थोड़ा टाइम लेने लग गया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक बात बता दें कि आपको वो उस चाल में चलना पड़ेगा साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने जितने भी गाने किए अफलातून के या जो भी प्रोग्रामिंग होते थे, उसके साथ साथ हमारा ऑर्केस्ट्रा भी होता था
1: जी,
2: लाइव ऑर्केस्ट्रा भी।

0: तो हम लोग पहले ट्रैक ले लेते थे, फिर तो ट्रैक ओपन करके इनके वॉइस जो कोरस, मतलब जितने ऑर्केस्ट्रा है कोरस है, उनमें हेडफोन में उनको आता था, जो हमारा कीबोर्ड का जो प्रोग्रामिंग का है। अब जैसे आप देखिए, मेरा गाना था ओले ओले, अब अफलातून, ये 98 के करीब के गाने हैं,
1: बिल्कुल.
0: तो हम लोगों ने उस वक्त से भी मतलब मॉडर्न थे हम लोग, जो आज भी हिट है।
1: तो अभिजीत साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था.
0: हाँ, ये पहले किसी और के था, और अभिजीत आया था एक गाने की, एक लाइन गाने के लिए, लगी लगी है ये दिल की लगी, ना समझो इसे दिल लगी। देखिए, जब सक्सेस होना होता तो ईश्वर की
1: जी
0: कृपा होती है।
1: जी
0: उसने गाया और उसकी वॉइस क्वालिटी, और नो डाउट मेहनती लड़का तो था ही वो,
1: बिल्कुल.
0: उसने जी जान तोड़ के वो गाने को गाया, ओले ओले गाने के बाद। अब वो गाना क्या हो गया कि मैं और प्रेमिला जी, मतलब मिसेस चोपड़ा,
1: पामिला
0: हाँ
1: जी.
0: प्रेमिला जी, तो अक्सर हम लोग जब भी बातचीत होए, वो बोले नहीं वो सिंगर ठीक है, मैं बोला नहीं जी ये ठीक है, अभिजीत ठीक है, तो बोले नहीं दिलीप जी ये कुछ लाउड नहीं लग रहा। आखिर मैंने बोला सैफ की जो वॉइस का टोन है, वो इसका टोन ज़्यादा बेटर है।
1: मिलता है.
0: फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं की। तो एक बार हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे, इतने में यश जी आ गए। यश जी आते, हम दोनों चुप हो गए। तो हम दोनों को देखते, यश जी समझ गए कि कुछ बात कर रहे थे, चुप हो गए। हाँ भाई क्या बात हो रही थी आपस में? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बात है। नहीं तो यश जी ने बोला, बोलो नहीं बोलो तानसेन क्या बात है? मैं बोला कुछ नहीं, बहन जी बोल रही है कि वो फलाना सिंगर है। और मैं बोला आप क्या चाह रहे हो? मैं बोला अभिजीत ज़्यादा ठीक लगा। तो यश जी ने मेरी तरफ और प्रेम जी की तरफ देख के बोला, देखो प्रेम, हम डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हैं, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, ये हमारा काम है, म्यूजिक का हमारा नहीं है। म्यूजिक का काम है म्यूजिक डायरेक्टर का, गाना इन्होंने बनाया है, तो ही वेरी इज नो वेरी वेल के इसमें कौन सा सिंगर है। अगर तानसेन बोल रहा है कि अभिजीत सही है तो अभिजीत सही है, वो हमको इसमें आपको बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए।
1: बहुत
0: तानसेन
1: बड़ी
0: जी
1: बात.
0: अभिजीत का ही रखेंगे, इस तरीके से वो अभिजीत का रहेगा।
1: क्या बात. और बहुत शानदार गाना गाया उस
0: नहीं
1: वक्त.
0: नहीं बहुत अच्छा
1: आवाज
0: गाया,
1: में जो सैफ अली साहब की आवाज
0: सूट
1: थी
0: हुई,
1: बिल्कुल
0: और
1: स्वीट हुई.
0: नहीं, और अभिजीत ने मेहनत भी की।

0: क्या होता है, ऐसे ही कोई नहीं स्टार बन जाता, कुछ तो काबिलियत होती है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से लता दीदी का, उन्होंने आएगा आने वाले से कई पहले गाने गाए थे, पर जैसे उनका महल का गाना आया तो दीदी को लाइमलाइट में आना था
1: जी,
0: आई
1: जी
0: तो आज इसी तरीके से सिंगर की जो जिंदगी है, कोई ना कोई गाना बना देता है।
1: बस उस पल का इंतजार होता है।
0: हाँ,
1: जैसे आपकी जिंदगी बनी सुरमा भोपाली से, आईना से,
0: हाँ,
1: मतलब
0: मगर
1: वो
0: पहचान बनी ओले ओले से।
1: चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: एक गाना मुझे आर्यभट्ट जी का, मतलब एक गाना था चिंगारी कोई भड़के,
1: अमर प्रेम का।
0: अमर प्रेम का एक गाना है। ये गाना मुझे दिल को इसलिए छूता है कि उसकी जो लय है, चिंगारी कोई, वो इतना लय, दबी हुई लय में गाना है। मगर जो बख्शी साहब ने लिखा, जो किशोर दा ने गाया और जो कंपोज हुआ, मैं समझ रहा हूं कि बस ये आइडियल चीजें हैं, ये हमारी स्कूल है। इसी गाने के हिसाब से मेरा टेम्पो मैंने रखा था, मेरा हम तुमसे ना कुछ कह पाए, हमने भी यहीं से एक टेम्पो लिया था। तो मैं चाहूंगा कि ये चिंगारी गाना आप सुनाएं।
1: जी बिल्कुल, सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप जी, आपने जैसा कि कहा कि आर डी बर्मन साहब का ये गीत या किशोरदा की आवाज या आनंद बख्शी के बोल, क्या इन सभी लोगों से मिलना आपका हुआ कभी?
1: नहीं, किशोरदा के साथ तो ऐसा है, मेरा मुलाकात किशोरदा उस वक्त जिंदा थे
0: और आर डी बर्मन साहब
1: और आर डी जी के साथ तो इसने काफी काम किया। किशोरदा का तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फिल्म थी हमारी, अमित जी गा रहे थे, अमित कुमार। तो अमित कुमार क्या किया, हमको नीचे बिठा के काफी देर तक आए नहीं। तो दादा उस वक्त दो बार घूमे, दादा घूमे तो मैं खड़ा होकर उनके पैर छूने के बोला, चंद साहब के लड़के बहुत मतलब वो जो उनका स्टाइल है, अमित नहीं आए। इतने में अमित नीचे आए तो उनको बोला, देखो अमित, ये नॉर्मल संगीतकार नहीं है, ये बहुत बड़ा खानदान है, इनको वेट नहीं कराने का, टाइम से रखो। टाइम दिया तो टाइम, अभी इतनी देर से बैठे हैं नहीं है, आइंदा ध्यान रखना। वो मेरी मिट्टी, और हमारा एक गाना गाने वाले थे सुरमा भोपाली, मगर वो किसी कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गा पाए, तो फिर वो गाना मोहम्मद अजीज ने गाया। तो ये जो लीजेंड लोग हुए ऐसे ही नहीं हुए। और गाना जब कोई चलता है, मैंने कहा ना कि सिंगर जो होता है वही उसको लेके चलता है, तो जितना अच्छा कंपोजिशन, जितनी अच्छी लिखावट थी, उतनी अच्छी फील भी इस गाने में, जो मुझे तो अच्छी लगी, शायद ऑडियंस को भी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे गाने हैं जिन्हें कभी भुलाया ही।
1: और उसके बाद में मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, बख्शी साहब के साथ जब मैं काम करने लगा, पहली फिल्म उन्होंने की मेरे साथ तू चोर में सिपाही
0: जी,
1: तो जिसका वो गाना था, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर, वो पिक्चर मेरी चली। फिर उसके बाद में एक पिक्चर थी हमारी भीष्मा, तो उसमें गाना उनका, बाकी गाने तो चले मगर एक गाना उनका बहुत चला, वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले के पिंजरे में पोपट बोले। क्योंकि मैं देखिए जिन जिन लोगों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, कैफी आजमी साहब के साथ मैंने पिक्चर की थी जाना ना दिल से दूर
0: जी,
1: और नीरज साहब के साथ में एक पिक्चर की जाना ना दिल से दूर।

0: विजय आनंद जी की, जो देवानंद जी की लास्ट पिक्चर थी एज ए हीरो, वो किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई। विजय आनंद जी की भी लास्ट पिक्चर थी वो, और जिसमें नीरज साहब के गाने थे, कैफी आजमी साहब के गाने थे, एक गाना था उसमें, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया,
1: बहुत सुंदर
0: था
1: गाना है।
0: कदम कदम पर इम्तहान, हर इम्तहान से गुजर गया। ये कैफी साहब का लिखा हुआ था और नीरज साहब का लिखा हुआ था जा

0: जाना। तो ये बहुत भाग्यशाली रहा। फिर मैंने इनके साथ जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म की, अर्जुन पंडित, जिसका एक गाना हमारा काफी पॉपुलर हुआ, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई। फिर असद भोपाली साहब के तो साथ की मैंने सुरमा भोपाली। माया गोविंद जी के साथ एक मैंने काफी काम किए, जिनमें एक हमारी पहली सीरियल है जिसको टैप टोन में नंबर वन का अवार्ड भी मिला है, वो थी फिल्म रमेश सिप्पी जी की किस्मत।
1: किस्मत।
0: हंसना है कभी रोना है, खोना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है।
1: गीतकार माया गोविंद के
0: माया
1: साथ आपने
0: गोविंद के
1: काम
0: साथ
1: किया है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम महिला गीतकार हैं, तो
0: नहीं,
1: माया
0: उनमें एक
1: गोविंद,
0: माया जी के अलावा एक रानी मलिक जी थी,
1: रानी मलिक थी जी।
0: बहुत अच्छी राइटर थी, काफी गाने उनके हिट हुए, मगर उनका एक गाना मेरे साथ काफी बड़ा हिट रहा। वो गाना था फिल्म मेहरबान का, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ये सोनू निगम जी का एज ए सिंगर फिल्म में खुद का गाया हुआ गाना पहला गाना था। इससे
1: अच्छा।
0: पहले उन्होंने अताउला के गाए थे, अच्छा जैसे ला दी रे तूने, रफी साहब के वर्जन गाए थे। मतलब एक होता है ना कि जिस गाने की मोहर लगे कि पहला गाना एज ए सिंगर,
1: वो ये
0: वो
1: था।
0: ये था।
1: हाँ, तो क्या अनुभव रहा सोनू निगम के साथ काम करने का? आज तो वो इतने बड़े कलाकार के रूप में है, वो पहला गीत गाते समय क्या उनका वो रहा
0: नहीं, वो
1: होगा?
0: गीत दरअसल उसका था भी नहीं, जब ये क्योंकि सोनू जी वहां काम करते थे और बच्चे ही थे, तो गुलशन जी को वो बोलते थे कि यार एक बार मुझे दिलीप सैन समीर सैन के यहाँ साथ में गाना है। तो गुलशन जी आए मेरे पास, बोला यार दिलीप जी एक काम करो, ये गाना जो बन रहा है ये सोनू से गवा लो। मैंने कहा सर मिथुन चक्रवर्ती है, आयशा जुल्का, मिथुन जी की चेहरे पे ये आवाज़ थोड़ी पतली लगेगी, मैं जाता हूँ शब्बीर या मोहम्मद अजीज कोई हो। नहीं, आप सोनू से गवाइए, बेचना तो मुझे ही है। पर सोनू ने गाया, सोनू ने इतना अच्छा गाया। और सोनू के अंदर एक बात बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल सिंगर तो है ही वो, मगर उसके अंदर एक कोई कुदरत की ऐसा जादू है कि उसको अगर बोल दो ना कि इसके अंदर ये भाव चाहिए तो भाव वो पैदा कर देता था। तो सोनू जी में बात तो है, तभी तो देखो आज सुपरस्टार है वो।
1: जी। तो एक गाना सुन लेते हैं, और कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना इसी पिक्चर में धीरे

0: इतना गहरा अनुभव आपका रहा है, इतने सारे कलाकारों के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सभी के साथ आपने काम किया है और बहुत सफल गाने आपने दिए हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपकी चॉइस या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की चॉइस अलग रही हो और आपको एडजस्ट करना पड़ा हो और कोई फिर एक बहुत ही शानदार गीत निकल कर आया हो?
1: नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत नसीब वाला रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे काम पे के साथ साथ मेरी बातों पे बहुत भरोसा करते थे और उनको ये लगता था कि ये आदमी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा।
0: जी
1: फिल्म लाइन के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनमें 19-20 चल जाता है
0: जी जी
1: कि आप शाहरुख खान लग रहे हो, आप फलाने लग रहे हो, आप बहुत अच्छा गीत लिख रहे हो, ये कर रहे हो, बट सिंगर आप किसी को नहीं बोल सकते। सिंगर जब तक आप सुर में नहीं होंगे तब तक आप यहां दिल में नहीं लगोगे।
0: सही कह,
1: दुनिया में अगर कोई सुकून की चीज है जो बगैर पैसे के मिलती है वो है संगीत और वो है गाना। अगर आपके मिजाज का गाना अगर आपको मिल जाता है, आप गाते हैं तो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सुनने को भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको सुकून मिलता है।
0: जी,
1: तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऐसा, क्योंकि जो मेरा डिपार्टमेंट है राइटर के लिए जो मुझे देते गए, मैं आज भी किसी को नहीं बोलता हूं कि फलाना राइटर है या फलाना। सिंगर के लिए जब मेरे पास कोई बात आती है तो मैं जरूर कह देता हूं कि भाई मुझे सिंगर वो दो जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं, क्योंकि मेरी कोई जाति दोस्ती या दुश्मनी तो होती नहीं सिंगरों से। मैं सुन लेता हूं, हाँ इस बच्चे में ये

0: टैलेंट है, अच्छा कोई 19-20 होता भी है सिंगर, तो हम उसको सपोर्ट करके बाकायदा वहां तक पहुंचाते।
1: तो दिलीप सेन साहब, जब आज के समय में तो ऐसा हम सुन ही रहे हैं कि ऑटो ट्यून जो टेक्निक आ गई है वहां थोड़ा सा आवाज 19-20 को ठीक कर दिया जाता है, लेकिन जिस समय आप संगीतकार बने थे, जब कड़ी मेहनत का जमाना था, रियाज का जमाना था, क्या कभी कोई कलाकार की आवाज 19-20 हो जाती थी? क्योंकि आपने तो बहुत सारे
0: नहीं,
1: कलाकारों के साथ काम किया है।
0: मैं बहुत नसीब वाला रहा हूं कि देखिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत, सोनू निगम, सुनिधि, अपना जसविंदर नेरुला, ऋचा शर्मा, अपना
1: अनुराधा
0: अनुराधा
1: पौडवाल जी
0: जी,
1: हैं, अलका याग्निक,
0: अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, ये पंकज उदास जी, और मनर अपना पंकज के अलावा मेरे साथ विनोद राठौड़ जी, मुकेश जी, नितिन मुकेश है, मोहम्मद अजीज है, शब्बीर जी, अनवर, इवन अपना शंकर महादेवन, अपना ये क्या बोलते हैं सुखविंदर, बाली ब्रह्म भट्ट,
1: अरे क्या,
0: जॉली मुखर्जी, ये जितने सिंगर मुझे जिस वक्त मिले, प्रमिला जैन, अपना सुषमा श्रेष्ठा जो
1: पूर्णिमा के नाम से
0: पूर्णिमा
1: हैं,
0: जी, और कोई सिंगर छूट नहीं जाए भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट श्वेता सेठी, ये जितने अलीशा चिनोई, मुझे जितने भी सिंगर मिले या जिनके साथ काम करने का मौका मिला, वो चित्रा जी और हरिहरन जी, ये इन्होंने मुझे हद से ज्यादा प्यार दिया, और मेरी गरिमा को या मेरी पोस्ट को एक रिस्पेक्ट दी, जो मैं चाहता था वो उस वक्त वैसा ही करते थे, चाहे वो कुमार सानू जी रहे हो, सोनू जी रहे हो, क्योंकि नो डाउट जब ये कोई भी गाना बनता है तो वो नया होता है, शब्द भी नए होते हैं, धुन भी नई होती है। अब सिंगर क्या होता है कि सिंगर जब आता है तो ये लोगों की एक बड़प्पन ये रहा है कि जब ये मेरे पास आते हैं तो ये सिर्फ मेरे लिए ही आते हैं, सुरेश वाडेकर जी हुए, फिर वो उस दिन दूसरा कोई काम नहीं लेते हैं
1: जी,
0: वो इसलिए नहीं लेते कि भाई दिलीप सेन के यहाँ कितना टाइम लग जाए, और ऐसा नहीं कि मैं सिंगर को कोई तंग करता हूँ,
1: नहीं नहीं वो बात
0: तो
1: नहीं,
0: वो
1: वो
0: उनको
1: रिस्पेक्ट
0: पता है कि एक ड्यू रिस्पेक्ट,
1: और
0: कि
1: कला
0: यार
1: के
0: वहां
1: प्रति,
0: जाएंगे तो वो भागने का काम नहीं
1: और
0: करना है,
1: कला के प्रति समर्पण।
0: समर्पण के नहीं यार, वो जब तक दिलीप सेन, समीर सेन मुतमिन नहीं होंगे, जब तक वो परफेक्ट नहीं बोलेंगे, हम उनके यहां से दूसरा गाना गाने जाएंगे नहीं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल, सुनिए।
1: कौन सा गाना?
0: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है जो दीदी ने मेरे दिल से गाया था, होठों पे बस तेरा नाम है,
1: तुझे चाहना मेरा काम
0: काम
1: है,
0: है जी।
1: फिल्म ये दिल लगी का गीत, बहुत सुंदर गीत है
0: जी
1: दिलीप
0: जी
1: सेन
0: जी
1: साहब
0: जी
1: ये,
0: जी
1: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: का परिवार संगीत सम्राट तानसेन की परंपरा से जुड़ा हुआ रहा है।
1: नहीं,
0: और
1: हम केसर सेन की औलाद हैं, मतलब केसर सेन जी उनके शिष्यों में गिने जाते हैं।
0: जी, तानसेन के शिष्यों में गिने जाते थे। तो और आपके पिता जमाल सेन साहब भी जाने माने संगीतकार रहे, और आपके घराने की जो विरासत के कारण आपके गानों में एक जो इंडियन क्लासिकल बेस और पक्के सुरों की जो गहरी समझ दिखाई देती है आपके गीतों में, आपकी संगीत रचनाओं में। लेकिन साथ ही हमने देखा कि आपके कुछ गानों में देसी तरीका भी अपनाया गया है, जहां पर टेबल पर धुन थपथपाते हुए भी गीत कुछ आए हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कैसे है?
1: नहीं देखिए, एक एक चीज याद रखिएगा, फोक जो है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि फोक कहते हैं किसको है।
0: जी,
1: फोक कहते हैं आमद को। एक चीज आमद होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो माताएं बहनें उस जमाने में, आज से 100-200 साल पहले, दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये न सीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया जी। वो इस तरीके से करके जॉइंट करती थी, रहती थी। तो वहां से ये फोक ट्यूने निकली। जैसे रेशमा जी के लिए कहते हैं कि रेशमा जी ने फोक से ही शुरुआत की, और वो भी राजस्थान से हैं। मेहंदी हसन साहब भी राजस्थान से हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जितने भी लोग राजस्थान के कल्चर में पैदा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, इनका सबका एक अपना कल्चर है। और फोक जो है, फोक हमारी आत्मा है, क्योंकि हर जगह राग तो चलती नहीं है, तो फोक ही होता है। मगर फोक कहीं ना कहीं, फोक में क्या होता है कि उतार चढ़ाव नहीं होता, वो एक ही ट्यून होती है। वो एक ही जैसे सा है तो उसी सा में चला जाएगा वो। फिर उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लो, तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने भी जैसे कि
0: कई गीतों में आपने ही प्रयोग किया?
1: नहीं, पर मैंने एक, मैं बहुत अविनाश करके हैं, गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं
0: जी,
1: जिनका काफी हिट गाने हिट हुए। उनका एक गाना था, अमे की याते गामना गोरी राज अचको मचको कारेली। हमने थोड़ा सा उनसे अडोप्ट किया उस गाने को। हम मेरी चोली के टूटे सब धागे, अचको मचको का करुणा। तो ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत फोक का सहारा ले लेते हैं, बट कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज्यादातर की कंपोजिशन खुद की हो,
0: कहीं से उठाकर नहीं ली गई हो, ताकि वही
1: फोक तो आप किसी का भी ले सकते हो। अब नौशाद साहब का अमूमन ज्यादातर के अगर गाना सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फोक चुने के आसपास के नजर आएंगे, बाकी वो अपनी कंपोजिशन करते हैं। वैसे नहीं, नैयर साहब हुए, उन्होंने पंजाब के फोकों को काफी इस्तेमाल किया, तो वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर को भी हम उठा के दे रहे हैं।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं
0: जी।

0: थे।
1: जहाँ हमें हर प्रांत की भाषा, हर प्रांत का पहनावा, हर प्रांत का संगीत, हर प्रांत का खाना पीना, इतनी वैरायटियां दुनिया में कहीं नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इसलिए हमें तो गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष में पैदा हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो आप काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी के अंदर कुछ अच्छी बातें जाए। आप काम ऐसा करो कि लोग बाग आपको जब भी बाजू में से निकले तो लोगों में बोले नहीं आ रही है ये दिलीप सेन जा रहा है, ये नहीं अरे ये दिलीपिया जा रहा है, ऐसा नहीं ये दिलीप सेन जी जा रहे हैं या दिलीप जी जा रहे हैं। आपके नाम के आगे पीछे जी लगना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: जी तब लगेगा जब जी वाला काम दूसरों का दिल जीतोगे।
0: जी चलिए एक गीत आपकी पसंद का सुनते हैं। कौन सा गाना?
1: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते,
0: बहुत सुंदर गाना,
1: तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आपकी 5वीं पीढ़ी फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है और आपको दादा साहब फाल्के जनरेशन पुरस्कार 2012 में
1: जी
0: मिला,
1: हाँ,
0: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
1: देखिए दादा साहब फाल्के के लिए मैं क्या बोलूँगा, पूरी दुनिया जानती है कि पितामह रहे हैं
0: जी
1: जिनकी वजह से आज हम सब रोटी खा रहे हैं। उनके नाम का अगर आपको कोई छोटा सा पर्चा भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 4 जनरेशन को मिला था, मतलब जमाल सेन से सोहेल सेन तक,
0: अच्छा
1: 4 पीढ़ी को के एक सम्मान मिला कि भाई इतना लंबा मतलब
0: सफर
1: सफर जो कपूर खानदान का रहा है या सेन परिवार का
0: जी
1: संगीत
0: जी
1: में रहा है।
0: जी जी
1: और 5वीं पीढ़ी में अभी मेरा पड़पोता समर जो सोहेल का बेटा है,
0: अरे वाह, मतलब सोहेल तो आ ही गए हैं, सोहेल सेन के बेटे भी आ
1: बेटे
0: गए
1: भी आने वाले हैं अभी
0: हैं
1: जल्द। जी
0: जी तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं आपको और
1: धन्यवाद जी,
0: आपके
1: धन्यवाद।
0: परिवार को। और नए गायकों, नए संगीतकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए मैं इतना ही कहूंगा, जितने जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर मेरा उन लोगों से एक ही कहना है कि देखिए इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को देख के और उसकी चीज की तारीफ करके आप उस जैसा मत बनो, उसके साथ कोई मिलती जुलती सी चीज अगर आप बनाते हो तो उसमें क्यों आपकी अलग एक तारीफ बनती है। और हमें अपना जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको खोना नहीं है, जो
0: जी
1: आज लुप्त होते जा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है कि शायद ये नई जनरेशन जो आ रही है, हमें थोड़ा संगीत सीखना चाहिए, संगीत की मालूमात रखनी चाहिए, शायरी की मालूमात रखनी चाहिए,
0: जी
1: कविताओं की मालूमात रखनी
0: भाषा
1: चाहिए,
0: की
1: भाषाएं में जिनमें देखिए कविताएं आनी चाहिए, शायरी उर्दू, जरूरी नहीं है कि आप उर्दू पढ़ें मगर कम से कम जैर जबर तो हो, आप तलफ्फुज तो सही करा सकें। तो ये जो चीजें हैं सिंगर के लिए भी जरूरी है, म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी जरूरी है। आप जरूरी नहीं है कि 100 राग हैं या 50 राग हैं या बेसिक 2 4 5, क्योंकि आजकल भैरवी, यमन कल्याण, भोपाली या पहाड़ी या समझो शिवरंजनी, इस टाइप के जो 4 5 रागे हैं वो थोड़ा बहुत उसका अनुभव हो, कॉर्ड से गाना बनाइए, मगर कम से कम आप अपनी मेलोडी को मत जाने दीजिए, जो आपकी धरोहर है
0: उसे रखिए।
1: उसे आप कायम रखिए। क्यों? कि आज हमारा हिंदुस्तान जो हमारी सभ्यता से ही पहचाना जाता है, हमारी
0: जी
1: संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हमारी पूजा पाठ से, हमारी इबादत से हिंदुस्तान पहचाना जाता है, क्योंकि हम अनेकता में एकता में पहचाने जाते हैं कि हमारे सर्वधर्म सम्मान है, हम हर
0: जी
1: धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, हर
0: करते
1: संगीत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे यहाँ जितने प्रांत है उतना ही हमारा अलग अनूठा संगीत है,
0: जी
1: प्यारा संगीत है। आप किसी भी प्रांत का संगीत ले लीजिए आपका दिल खुश होगा, पूरा प्यारा सा गुलदस्ता है हमारा संगीत का।
0: बिल्कुल सही कहा। बस जाते जाते एक गीत आपकी पसंद का सुनते।
1: तो मेरा एक बहुत पसंदीदा गाना है, मैं चाहूंगा कि ये गाना आप सुनाएं।
0: जी बिल्कुल सुनाते हैं, चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: दिलीप सेन साहब, जाते जाते कि आप एक शास्त्रीय बंदिश हमें अगर सुना दें तो हमारे श्रोता भी खुश
1: मैं
0: हो जाए।
1: आपको एक वो चीज सुनाने जा रहा हूं कि जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो।
0: जी
1: शिव तांडव तो आपने सुना ही है, जैसे कि जटा कटा जटा टज प्रभावता वितस्तले वीरो विलंब विलंब भूतम भुतंग तुंग मार जटा टवि गलत ज्वल प्रभाव भावित।

0: वापस तले। ये शिव तांडव हो गया
1: जी।
0: कि हनुमान तांडव जो है कि हनुमंत के लपेटे दिल अंगूर की झपेटे दिल दुस्त को दपेटे चले पेटे चाकर लाने बजे नक चारा तो दिन तो वो तो कटाकटे की रिसे ने पटा पटे पटी पटी पाट कभी कुह की लकार की लजू हो जी लकार पड़ी पे हिड़ी बिलकार कटे रखे जनी दान कहे तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की रवान प्यारे सीताराम को उजारो रघुवंश को अनियारो जन पे जे महागुरु रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैठी दंड मुन दंड न उमन न सुखन न है कल को भूपत सर तो को ना वेलो अल वेलो ना रेलो रूप लेलो चल राके सनी कर को आन सकते की रहते उमंडी खले खानी चंडी पति सो कमंडी कुल खानी देने कर को। ये इस तरीके से पूरा हनुमान तांडव है जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो मेरी आवाज में रिकॉर्ड है और इसी से ये जो रैप बना है तो बोलते हैं ना लोग प्रदेश का है कहीं का नहीं है हमारे छंद है आज से 10,000-20,000 साल पहले के ये छंद है जो हम डांस में यूज करते हैं। इसे तूने मुझे देखा नहीं मैंने तुझे देखा नहीं चाय भी पिलाऊंगा खाना भी खिलाऊंगा चले मेरे साथ तेरे बाप को मिलाऊंगा।
1: अच्छा
0: तो इससे आप कुछ भी रैप वगैरह बना सकते हैं। तो ये रहा और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इसलिए आपके पूरे परिवार को आकाशवाणी को विभूत भारती को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां नमस्कार।
1: बहुत खूब और आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया इसके लिए आपका तहे दिल से विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार
0: धन्यवाद।
2: तो ये था संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग संपादन सहयोग अंबालिका सिंह विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

गाना गीत कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी, चल पड़े साथ ऐसे हम बनके जन्म जन्म के साथी। तुम कहते रहो मैं सुनती रहूं और ये बरखा की रात यूं ही बहती रहे। दिल ने दिल की

मस्ती से बहती पवन झूम झूम के डोले, जब बरखा की हर बूंद तन में हलचल सी कर जाए, काली घटाएं बादल बन बरसे, जब बावरा ये मन झूम झूम के गाए।

सावन बहका है, बूंदों पर है खुमार, मनवा भी बहका है, बागों में मेले हैं, झूलों के मौसम में साथी अलबेले हैं, शायद सावन भी कुछ कहता है।

चुनरिया जब थानी प्रकृति करे श्रृंगार, मोती बरसाता गगन सोना उगलती धरा। नए रंग के ये ऋतुएं मनमोहक आलम सी है छटा। चारों ओर छाई मदहोशी सावन।

बहती हवा ने तेरी खुशबू बिखेर दी, रिमझिम फुहारों ने जब तेरे जुल्फों का साथ छोड़ा, भीगी रात में तेरा करीब रहना, ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों में तेरी सांसों का घुल जाना।

बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, सावन की बूंदों में झलकती है उनकी तस्वीर, आज फिर भीग जाने को हम हैं बेकरार, तुझे पाने की चाहत में।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे

0: तक और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जारी है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
3: Go home. I experienced it too. I experienced

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सजेशन है किसान भाइयों से कि आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करें, जितना भी हो सके गाय के गोबर या तो वर्मी कंपोस्ट परचेस करिएगा या तो गाय के गोबर कहीं से भी कलेक्ट करिएगा, कलेक्ट करके आप अपना जमीन में डालिएगा। आज के दिन में जो जमीन के अंदर में नेचुरल जो केचुआ होता है वो केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से वो नीचे चले गया,
1: कंपोस्ट
0: वो नीचे चले गया, तो आपको उसको ऊपर लाना है तो आपको गाय का गोबर डालो ताकि जैसे ऊपर आएगा केचुआ, जैसे ऊपर आएगा आपका जमीन में उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। और आप बैंगन डालिए, टमाटर डालिए, सब्जी डालिए, लोबिया डालिएगा, आपको बहुत अच्छा फसल होगा। और आप तो जैविक तरीका से अगर आप सब्जी को उगा कर आप अपने अपने कंज्यूम कर रहे हो तो आपके मन में बीमार नहीं आएगा, बीमारी से आप बहुत दूर रहोगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत जरूर लग रही है लेकिन वो मेहनत आपकी पूरी की पूरी आपके खेतों पे नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केले के पेड़ भी पूरे पूरे केले के फलों से भरे हुए हैं। तो केले के उत्पादन करके आप इसको जो है सब्जी के रूप में ही सेल कर देते हैं या पके हुए फल जो है उसका इंतजार करते हैं?
0: ये तो सब्जी के रूप में,
1: सब्जी केला है,
0: ये
1: सब्जियों के साथ ही ये भी मार्केट चला जाता है या आस पड़ोस में भी आप कुछ जो बचता है उसे बांट देते हैं?
0: सब्जी के लिए वो मार्केट चले जाते
1: हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आपने अपने घर में ही एक गौशाला बनाई हुई है जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चिया भी हैं, गाय हैं, और उन्हीं के बीच में आप भी रह रहे हैं और आप उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। साफ सुथरी ये गौशाला है और इसमें कितनी सारी आपने गाय रखी है, तो आप इनके बारे में जरा बताइए।
0: देखिए, गौ माता को पालना एक मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज है और मैंने अपनी भारत का जो देसी गाय है जैसे गिर गाय है, अभी हमारे पास में गिर गाय की मैंने रखा हुआ जी, गिर गाय है भाई। एक्चुअली मैंने इसका दूध जो है ए टू प्रोटीन होता है, ए टू प्रोटीन है, अगर इसको हम कंज्यूम करने से अपना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा,
1: बहुत अच्छा है, बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए,
0: रोग प्रतिरोग से लड़ने की शक्ति इसमें
1: प्रदान करता
0: है। तो उसी वजह से जो मैंने गौ माता को पालना शुरू करा और उन्हीं के द्वारा उनका गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाकर मैंने खेती बड़ी खेती का काम भी शुरू करा।
1: बिल्कुल, पशु भी हम मनुष्यों की तरह बीमार पड़ जाते हैं, अगर आपके पशु कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आप क्या करते हैं?
0: तो हमारा पशु बहुत कम बीमार होता है
1: जी।
0: अभी हमारे पास में जो ये गिर गाय है, ये गाय मैक्सिमम अगर अधिक बारिश में भीगने से उनको थोड़ा सा निमोनिया का दिक्कत आती है, निमोनिया का दिक्कत आती है तो मैंने कोई मेडिसिन उनको नहीं देता हूँ। हमारे जो यहाँ पे जो लोकल है अंडमान के जो संभालू पत्ती बोलते हैं, उस पत्ती को जो मैंने आग के अंगार में डालकर उनका धुआं उनको देता हूँ, तो उनका नाक में जितने भी जमा हुआ सर्दी है वो पूरा नाक के द्वारा बाहर आ जाता है, दो टाइम तीन टाइम देने के बाद वो रिलीफ हो जाता है।
1: तो क्या इनको सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है या कोई और रोग भी जो है इनमें प्राय देखा जाता है जो कि हो जाता है?
0: देखिए, ज्यादातर तो गाय में रोग तो बहुत सारे रोग है और इसमें जैसा मैंने भी बोला निमोनिया वाला, निमोनिया का साथ जब बुखार भी आ रहा है तो बहुत सारी गाय जो है ब्रीडिंग गांव को हम जो उनको इंजेक्शन तो नहीं दे सकते, कोई प्रेग्नेंट है उसको भी इंजेक्शन नहीं दे सकते, तो मैंने ये प्रोसेस में उनको ठीक हो जाता है तरीके से मैं ठीक कर देता हूँ। और दूसरा है इनमें जो है बहुत सारे जो नया जो बच्चे है जिसको भी जो हीफर है, हीफर में एक चीज देखने को मिले अंडावान, ये मेरा ही नहीं है, मैंने मेरा बहुत सारे दोस्त है जो जिनके बड़े बड़े फॉर्म है, मैं अक्सर उनके पास जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र है, यहाँ पे बड़े बड़े फॉर्म रखे हैं, 50 हाउ गाय रखे हुए, वैसे वाले पास भी जाकर मैं मिलता हूँ, ब्रीडिंग वाले अच्छी होनी भूल नहीं है, तो ताकि
1: टेक्निक अभी बहुत हाई हो गई है, तो अगर आप वेटनरी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको इस

0: कोई सलूशन जरूर मिलेगा। अच्छा, और कोई इनकी वैक्सीन वगैरह नहीं है ऐसी कि जिससे आप पहले से ही वैक्सीन अगर करा दे तो आपके पशु बीमारी से बच सके?
1: जी, अभी हमारे निकोबार प्रशासन वेटरनरी डिपार्टमेंट एक एफएमडी वैक्सीनेशन जो है करती है
0: खुरपकार मुंह पका रोग के लिए,
1: बहुत अच्छा है।
0: बहुत कॉमन रोग है वो अंडमान के पशुओं के लिए, ये बहुत कॉमन रोग है और ये भयानक रोग भी है, लेकिन जैसा आपने बताया कि इसकी वैक्सीन है तो क्या इससे फायदा होता है?
1: बहुत फायदा होता है, अभी गाय लोग बीमार नहीं होते, पहले बीमार होते थे।
0: बिल्कुल, ये अगर हो जाता है उसके बाद भी अगर इस रोग का कोई इलाज किया जाए तो क्या ठीक हो जाती है गाय?
1: अगर समय में अगर इलाज करें तो ठीक हो जाती है। वेटरनरी डिपार्टमेंट वाले बहुत हमें मदद करते हैं, दवाई वगैरह लिखकर वो ड्रेसिंग करते हैं। मुंह पका फूल पका में तो मैक्सिमम तो फूल में ही प्रॉब्लम होती है,
0: उसमें
1: बहुत सारी जगह स्मेल आना तो हो जाता, तो चलने में दिक्कत हो जाती है, खाइए नहीं, तो तब हम जाकर वेटरनरी डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट कर लेते। तब आगे
0: ध्यान रखना जरूरी होता है और अगर आप समय रहते किसी भी चीज का पे ध्यान देंगे तो वो चीज जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि आपकी जो गाय है ये पूरी तरह से स्वस्थ लग रही है, अब हम जानना चाहेंगे कि इनसे आपको दूध कितना मिलता है, एक गाय एक दिन में कितना दूध देती है?
1: ये गाय अभी तो 8 लीटर एक गाय में आती है एक दिन में,
0: सुबह शाम मिलाकर।
1: तो सुबह शाम मिलाकर।
0: अच्छा, तो आपके पास तो बहुत सारी गाय है, तो फिर आप इतने दूध का क्या करते हैं?
1: तो सब मेरे घर आके कलेक्ट करके जाते हैं।
0: कलेक्ट करके मतलब लोग बंधे हुए हैं?
1: हाँ जी, बंधे।
0: ये आटम पहाड़ गांव जो है यहाँ पर दूध का क्या रेट चलता है, किस भाव से बिकता है एक लीटर दूध?
1: मेरा ए टू मिल्क है मैडम,
0: ए टू मिल्क है,
1: ए टू मिल्क है, उसकी इसका जो 120 रुपया है।
0: अच्छा,
1: आज हमारे फीड के दाम 1600 रुपया जो था, आज वो 1850 रुपये फीड है 50 किलो का, तो वो हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने से हमें कुछ मिलता नहीं, तो इसलिए जो गाय माता जो दूध देती है उन्हीं को सेल करके उन्हीं को खिला रहा है, तो शुद्ध दूध दे रहा है, ये तो मिल्क वाली दूध है, मैं किसी को लेके जाकर नहीं देता हूँ, हमारे वाइफ जो उसको मेंटेन करती है, घर में खुद आकर लोग ले जाते हैं।
0: इतनी बातों के बाद हमें जो समझ में आया है कि आपके घर में चारा उत्पादन भी होता है, उसमें भी आप जो है गाय के गोबर की जैविक खाद डालते हैं, वो भी शुद्ध आपको मिलता है, वही चारा आप अपनी गाय को खिलाते हैं, गायों से मिलने वाला दूध भी आपका बहुत प्योर है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी चीजों में प्योरिटी मेंटेन करके रखेंगे, समय समय पर उसको जो है पशुओं की जांच करवाएंगे, उन अच्छी फीड देंगे, तो आप उससे मिलने वाला जो उत्पाद है वो अपने आप ही शुद्ध और उत्तम हो जाता है। दामोदर जी, आपसे आज इतनी बातें हुई, आपने अपनी कृषि के बारे में, अपनी खेती सब्जियों चारा घास और पशुपालन के बारे में इतनी अच्छी बातें हमारे किसान भाइयों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत नमस्ते मैडम, जय गो माता।
2: अभी आपने पशुपालन और चारा घास की खेती करने वाले एक किसान भाई जी दामोदर जी से की गई ये बातचीत सुनी और जाना कि वो किस तरह से पशुपालन और चारा घास की खेती करके लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, इतनी बातों और जानकारियों के बाद अब मनोरंजन हो जाए, तो चलिए मनोरंजन के बहाने आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

साथियों, गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। लेकिन अब रुख करते हैं मौसम की ओर। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के मिजाज किस तरह रहेंगे और मौसम के इन हालातों के साथ समझौता करके क्या कुछ कृषि कार्य आपको किस तरह से करने की सलाह दी जाती है, जानते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श के तहत। अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आगामी 2 अगस्त के दौरान मेघगर्जन, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशा व्यक्त की गई है। किसानों को वर्षा रहित अवधि में कृषि कार्य करने, मेघगर्जन के दौरान खेतों में कार्य न करने तथा खेतों में जल भराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी बनाए रखने तथा उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग केवल शुष्क मौसम में करने की ही सलाह दी जाती है। वर्षा से ठीक पहले उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग न करें। प्रतिकूल मौसम के दौरान ही पशुओं को सुरक्षित आश्रय में रखें और अंडमान एवं निकोबार तट के साथ सटे हुए समुद्री क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज सतही हवाएं, जिनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं, चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। समुद्र की स्थिति उग्र रहने की संभावना है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि मौसम परामर्श प्राप्त करने के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करें। साथियों, इस मौसम पर आधारित फसलों के लिए विशिष्ट सलाह दी जाती है कि रोपणी क्यारियों में प्रतिरोपित धान के खेतों में रुक रुक कर होने वाली वर्षा के कारण अस्थायी जल भराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें, खेत की मेड़ों की मरम्मत करें तथा वर्षा के जल का संरक्षण करें। प्रतिरोपित धान की फसल में रुपाई के 20 से 25 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करें और स्थानीय अनुशंसा के अनुसार नाइट्रोजन की दूसरी किश्त चावल की खेती में तभी दें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और निकट भविष्य में अधिक वर्षा की संभावना न हो। यदि अनुशंसित मात्रा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है तो दूसरी किश्त के रूप में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। जैविक खेती अपनाने वाले किसान स्थायी रूप से अनुशंसित जैविक विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। बागवानी फसल करने वाले किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च, अदरक एवं हल्दी जैसी जल भराव संवेदनशील फसलों के नालियों की उचित व्यवस्था बनाए रखें ताकि पानी का ठहराव ना हो और निचले इलाकों में पानी की निकासी का उचित इंतजाम करें ताकि बारिश का अतिरिक्त पानी जल्दी निकल जाए। सुपारी के बागान वाले किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सुपारी, नारियल तथा मसालों सहित भंडारित कृषि उपज को नमी से सुरक्षित रखें ताकि खराब होने से उन्हें बचाया जा सके। उपज को स्वच्छ, सूखे एवं अच्छी तरह हवादार वाले स्थानों में भंडारित करें। पशुपालन करने वाले किसान भाइयों को सलाह है कि वे गाय के लिए पशु आहार को वर्षा एवं नमी से सुरक्षित रखें ताकि फफूंद, मोल्ड आदि का विकास ना हो। आवश्यक एवं स्थानीय अनुशंसा के अनुसार ही अनुमोदित आहार संरक्षक जैसे प्रोपियोनिक अम्ल का उपयोग करें। फफूंद लगा या खराब दिखने वाला पशु आहार पशुओं को ना खिलाएं और उसे तुरंत ही नष्ट कर दें। मछली पालकों को सलाह दी जाती है कि मत्स्य बीज संचयन के पूर्व तालाब से जलीय खरपतवार तथा

परभक्षी एवं अवांछित मछलियों को हटा दें। तालाब में जल प्रवेश एवं निकास स्थानों पर जाली लगाएं ताकि अवांछित मछलियों के प्रवेश को रोका जा सके। मत्स्य बीज संचयन से पहले तालाब में जल की गहराई, पीएच तथा घुलित ऑक्सीजन की जांच करें और सभी मानक होने के बाद ही चूना अथवा जैविक खाद का प्रयोग करें। अभी आपने मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सुनी, जो हमें केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम के सौजन्य से प्राप्त हुई थी। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो मिट्टी क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी। और इस प्रश्न का सही जवाब है, मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो ऐसी मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी।

क्या कहलाएगी, अम्लीय मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी? और इस प्रश्न का सही जवाब है, मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम है तो ऐसी मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाएगी।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस महफिल को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हैं? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: अभी आप किसानवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए आमने सामने कार्यक्रम। आकाशवाणी का यह श्री विजयपुरम केंद्र है। आमने सामने के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए द्वीपों में कैरी द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां विषय पर कैरी के निदेशक डॉक्टर एस जयसुंदर के साथ की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता पूजा सिंह।
7: नमस्कार, आमने सामने के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कृषि व्यवस्था अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, जैव विविधता और जलवायु के कारण देश के अन्य क्षेत्रों से काफी अलग है। ऐसे में किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को नई तकनीकों, वैज्ञानिक सलाह और टिकाऊ खेती के उपाय उपलब्ध कराने में केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की क्या भूमिका है, इन्हीं कुछ बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैरी के निदेशक एस जयसुंदर। जयसुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम। तो जयसुंदर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैरी की गतिविधियों के बारे में, किसानों के लिए विकसित तकनीकों और विकसित भारत 2047 के विषय पर जो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपका विभाग देता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
8: कैरी का यहाँ पे 23 जून 1978 में इसका ये हुआ था, शुरुआत हुई थी। और कैरी का मतलब है कि सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे आपने बताया कि केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान।
7: जी,
8: ये जो संस्थान जो बनाया गया है, इसमें प्लांटेशन क्रॉप, इसमें एनिमल साइंस, इसमें फिशरीज साइंस, इसमें डेयरी साइंस, सभी का समन्वित करके ये केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। मुख्य उद्देश्य यह है कि हम किसानों के लिए अच्छी तकनीकी बनाएं, अच्छी वैरायटी बनाएं, अच्छी पैदावार वाले फसलें बनाएं, और जो किसान खेती कर रहे हैं उसको हम कैसे आधुनिकीकरण करके उनका उपज हम बढ़ाएं, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है उसको हम इंक्रीज कर सकें। जैसे आपने बताया कि 2047 तक जो विकसित भारत का उद्देश्य है, कैरी भी इसी दिशा में काम कर रही है। इसके लिए हमने एक रोड मैप भी तैयार किया है, कैसे कृषि के अलग अलग संसाधन का विकास किया जाए, कैसे तकनीकी का विकास किया जाए, सभी को एक साथ मिला जुला कर हमने इसके लिए दिसंबर के माह में पिछले वर्ष एक

0: हमने संगोष्ठी की थी, उसके बाद हमने एक रोड मैप पूरा, एक हमने पूरा रूपरेखा इसका तैयार किया।
1: जी, तो द्वीपों के किसानों को सीमित भूमि, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं, गुणवत्ता वाले कृषि आदानों की जो उपलब्धता है और विपणन जैसी जो सुविधाएं हैं, तो
0: जी
1: उसमें वो आप उन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ये अनुसंधान नई तकनीकों और विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों की किस प्रकार सहायता कर रहा है?
0: जैसे मैंने बताया कि लगभग 5 दशकों से यहाँ पे कैरी काम कर रही है। इस 5 दशकों के दौरान कैरी ने कई सारे फसलों का जो है यहाँ पे विकास किया है। जैसे इसमें हम धान की अगर हम देखें तो करीब करीब 11 अच्छी नस्ल वाले जो है हमारे वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है और उसका गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया है।
1: जी
0: इसके अलावा दाल की करीब 7 जो किस्में हैं हमने इसके तैयार किए हैं। इसके अलावा नारियल के करीब करीब 6 किस्में हैं। इसके अलावा जो सब्जी के हैं बैंगन के 2 किस्में हैं। इसके अलावा जो ये मरसा जो हम लोकल इसमें कहते हैं भाजी, उसका भी 1 किस्म है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, इस तरह के कुल मिलाकर करीब हमने 43 यानी कि 43 जो है किस्में हमने तैयार की हैं। और ये जो हमने सिर्फ तैयार ही नहीं की है बल्कि हम किसानों तक भी पहुंचाया है। इसमें आप देखेंगे कि करीब हमारे जो अच्छी वाले जो ये धान की किस्में हैं, लगभग 30% जो धान उगाया जाता है उसमें हमारा जो है ये धान की फसल है। और उसी तरह बैगन भी करीब करीब 100 हेक्टेयर है। इसी तरह एक एरिकनट जो सुपारी बहुत ही यहाँ पे प्रसिद्ध है, मंगला और जो समृद्धि, समृद्धि भी हमारे द्वारा विकसित की गई एक मतलब ये किस्म है
1: जी
0: सुपारी की। उसका भी बहुत आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान से लेके साउथ अंडमान तक कई किसान इसको लगा रहे हैं। इसके अलावा आप मत्स्य पालन में भी देखेंगे तो इसमें भी हमने कई सारे जो है तकनीकी का हमने विकास किया है और किसानों तक पहुँचाया है।
1: जसंत जी, यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर और कैरी
0: जी
1: दोनों में बहुत सी समानता देखी जाती है, वो भी बागवानी, मत्स्य, डेयरी, उन क्षेत्रों में काम करता है, किसानों को बढ़ावा देता है। सेम चीज़ हम एग्रीकल्चर में भी
0: जी
1: देखते हैं, तो क्या फ़र्क है दोनों में?
0: इसका बहुत ही एक सीधा मोटा मोटा फर्क ये है कि हमारा जो है संस्थान जो है कृषि अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान का मतलब है हम जो भी तकनीक जो आते हैं, जो टेक्नोलॉजी आते हैं उसका हम विकास करते हैं। और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया, वो जो तकनीक हम उन तक पहुंचाते हैं। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस तकनीक को किसानों तक डिसेमिनेट करें। क्योंकि
1: अच्छा
0: कैरी का जो भूमिका है हम बहुत ही किसानों तक हम जाते हैं, किसानों के समस्या का हम डिस्कस करते हैं, उस समस्या को हम लैब में लेके आते हैं। लैब में लाने के बाद में अनुसंधान करके या तो किस्में या तो टेक्नोलॉजी या तो तकनीकें हम बना के उसको हम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तक हम पहुंचाते हैं। और हमारे पास भी कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके साथ भी हम मिलजुल कर हम काम करते हैं। ना सिर्फ तकनीकी को पहुँचाना बल्कि जो ट्रेनिंग हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इस तरह के गतिविधि भी हम करते हैं।
1: मतलब ये संस्थान के द्वारा रिसर्च की जाती है, एक
0: जी
1: पहल की जाती है और वो डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता
0: जी
1: है। जी, आजकल जो एकीकृत कृषि प्रणाली है उसको टिकाऊ और लाभकारी खेती के मॉडल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जानना चाहेंगे संस्थान द्वारा विकसित IFS मॉडल किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आजीविका को सुरक्षित बनाने में किस प्रकार मदद करते हैं?
0: इंटीग्रेटेड कृषि प्रणाली या तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप कहें, जो एकीकृत समन्वित कृषि है, यहाँ का आधार है, यहाँ के जो किसान हैं उनका जो आधार है। आप देखेंगे यहाँ पे कुल मिला के करीब 37,000 के हेक्टेयर के करीब में कृषि की जाती है। उस 37,000 में भी आप देखेंगे कि 60 से 70% जो है प्लांटेशन क्रॉप यानी कि सुपारी या तो नारियल की खेती होती है, और 6 से 7 हज़ार तक में धान, उसी तरह सब्जी भी करीब 6 से 7 हज़ार हेक्टेयर। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि जो बेसिक है यहाँ पे प्लांटेशन आधारित यानी कि जो है नारियल या तो सुपारी आधारित कृषि की जाती है। और
1: जी
0: उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें मसाले करते हैं। तो एकीकृत कृषि प्रणाली का मतलब यह है कि सभी कुछ एक साथ मिक्स कृषि, उसमें आप दो तीन हमने मॉडल डेवलप किया है। प्लांटेशन मॉडल यानी कि अगर आपके पास में प्लांटेशन हो या तो नारियल या तो सुपारी की जमीन हो या तो खेती हो, उस आधारित कृषि प्रणाली। अगर आपके पास में लो लाइंग एरिया हो यानी कि समतल एरिया हो जिसमें आप धान करते हैं, धान

0: के बेस में हम करके हम उसको ये कृषि जो है प्रणाली हम ये अपनाते हैं।
1: जी
0: और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फसलों का एक साथ मिश्रण होता है। अब इसमें अब जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए किसी किसान के पास में धान या तो सुपारी है, उसके बीच के जो स्पेस है उसमें आप मसाले की खेती कर सकते हैं, उसमें आप सब्जी की खेती कर सकते हैं, अगर गाय रखा है तो गाय के लिए चारा भी उगा सकते हैं, साथ ही उसमें एनिमल साइंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे हो गया, कोई गाय भी रख सकते हैं और बकरी भी रख सकते हैं, मुर्गी भी रख सकते हैं, अगर आपके पास में छोटा सा तालाब है तो बतख भी रख सकते हैं। इसका ये होता है कि एक का जो आउट पुट होता है, मान
1: जी
0: लीजिए जो भी खेत से निकलता है वो दूसरे के लिए इनपुट का रूप में उसको
1: बन
0: हम लेते
1: माध्यम
0: हैं,
1: बनता है
0: तो
1: जी
0: क्या होता है कि इकोनॉमी जो है सर्कुलेशन में होता है।
1: जी
0: जैसे मान लीजिए कि गाय से गोबर आता है, गोबर को हम कंपोस्ट बना के खाद में इस्तेमाल करते हैं, और जो पेड़ पौधे के जो ये होते हैं बायोमास हम कहते हैं उसको भी हम कंपोस्ट बनाते हैं।
1: जी
0: तो एक के ऊपर आधारित नहीं होता है, इसमें जितने भी कृषि से जुड़े हुए जो होते हैं आपस में एक साथ कनेक्शन होता है। तो इस तरह के जो दो हमने मॉडल बनाया है, जैसे मैंने बताया कि प्लांटेशन बेस्ड यानी कि नारियल और सुपारी बेस्ड, उसमें हमने देखा है कि करीब करीब 1 हेक्टेयर से किसान 2.5 से 3 लाख आराम से मुनाफा कमा सकता है।
1: जी
0: उसी तरह जो फील्ड वाला यानी कि आपके पास में धान आधारित जो कृषि है उसमें भी अगर 1 हेक्टेयर से करीब करीब 2.5 लाख आराम से कमा सकता है। इसी तरह हमने निकोबार में आप देखेंगे वहाँ पे ट्यूबर जो कंद वाले जो ये हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं ट्यूबर क्रॉप, तो वो आधारित भी हमने वहाँ पे कृषि प्रणाली जो एकीकृत इसका हमने डेवलप
1: विकास
0: किया है।
1: जी। तो ये जो आपका विभाग है जो ये इतनी विकासीय गतिविधियां चला रहा है, इससे लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। तो ये तो हमने कृषि संबंधी कृषि पद्धतियों की बात की। अगर हम रोजगार के क्षेत्र में देखें तो किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो प्रशिक्षण और कौशल विकास उनके लिए आवश्यक है। इस दिशा में विभाग द्वारा कौन कौन सी पहल की जा रही है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो इच्छुक लोग हैं वो क्या कर सकते हैं अगर वे हमें सुन रहे हैं और आपके विभाग से जुड़ना चाहते हैं या इन कार्य क्षेत्रों में जुड़ना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई विकल्प है?
0: काफ़ी विकल्प हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ये क्षेत्र है एक ही कृषि आधारित नहीं है, बल्कि कृषि से साथ साथ इसका जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग हम जो कहते हैं, सेकेंडरी एग्रीकल्चर कहते हैं, टर्शियरी एग्रीकल्चर कहते हैं, इसके लिए भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो
1: जी
0: इसमें हमने जैसे एक पोस्ट हार्वेस्ट का हमारा एक लैब है, इसमें हमने बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं। हाल ही में हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी इसमें हमने इस्टेब्लिश किया है। इसके लिए भी जो भी युवा है या भी जो भी इंटरेस्टेड है हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे संस्थान में आ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो मशरूम है, मशरूम का भी आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, ऑयस्टर जो मशरूम, बटन
1: जी
0: वाला मशरूम यहाँ पे होना मुश्किल है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम का काफ़ी यहाँ पे संभावना है।
1: जी
0: इसके लिए भी हम बहुत ट्रेनिंग देते हैं, और एक मिनी इंक्यूबेटर का टेक्नोलॉजी मैंने बताया, इसके लिए भी बहुत ही सक्सेसफुल ये जो एंटरप्राइज आप कर सकते हैं। साथ ही हमें लेटेस्ट में हमने दो टेक्नोलॉजी और इसका निर्माण किया है, एक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। मान
1: जी
0: लीजिए कि आपके पास में कोई भी किसान मत्स्य पालन करना चाहते हैं और आपके पास में तालाब नहीं है या तो जगह नहीं है, आप घर में भी आराम से आर्टिफिशियल ये टैंक
1: पॉन्ड
0: बना
1: जी
0: के ये कर सकते हैं। उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप है, इसमें आप झींगा पालन कर सकते हैं आराम से, 60 या 90 दिन में आराम से आप एक छोटे से 10,000 लीटर टैंक से करीब 30 किलो झींगा आराम से उत्पादन ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो केकड़ा हो गया, जो कीचड़ वाला जो केकड़ा हो गया, मड क्रैब फैटनिंग, उसका भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इसके लिए भी आपको बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, एक रूम में भी आप मल्टी टायर सिस्टम में आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर की काफ़ी यहाँ पे संभावना है,
1: जी
0: आप देखेंगे कि फूल की बहुत ही यहाँ पे डिमांड होती है और सब फूल मेनलैंड से आते हैं। इसके लिए हमारे पास हेलिकोनिया जो एक्सोटिक वैरायटी है और यहाँ के वातावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसका भी हमने बहुत सारा ये बनाया है। सिर्फ फ्लोरिकल्चर ही नहीं, उसके बाद में उसको कैसे बुके बनाना, उसको कैसे सजावट करना, अरेंज करना, उसके
1: जी
0: लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट में वर्जिन कोकोनट ऑयल के अलावा जैसे अचार हो गया, बहुत सारे जो हमारे होम साइंस का भी एक यूनिट है कृषि विज्ञान केंद्र में, चिप्स बनाना, इस तरह से एक आप देखेंगे कि बहुत सारे हमने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं
1: जी
0: इनको हमने ट्रेन किया और बहुत ही

0: सक्सेसफुली वो इस तरह के जो उत्पाद है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो बेचना है। तो कहने का ये मतलब है कि ना सिर्फ कृषि प्रणाली बल्कि पोस्ट हार्वेस्ट से भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं। कुल मिला के साल में हम करीब 50 से 60 जो है ट्रेनिंग करते हैं।
1: अब एक आखिरी सवाल। देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में द्वीप समूह की कृषि भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है और यहाँ पे आप हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: 2047 तक काफ़ी चुनौतियां हैं। जैसे आप देखेंगे कि विश्व भर में दो तीन संकट आ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज का जो है संकट है वो भी आ रहा है, आइलैंड में दिख भी रहा है, जो रेन का भी इवेंट होता है। पहले आप देखिए कि करीब 7 या 8 महीने बारिश होता था, ये जो
1: जी
0: बारिश आजकल घट के करीब 150 या तो 155 दिन में ही रह गया है। लेकिन आप देखेंगे कि कुल मिला के जो बारिश है 3000 मिलीमीटर उतना ही होता है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है ये जो है इसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। और सूखा भी हम देख रहे हैं, करीब करीब 4 महीना से सूखा हो रहा है। तो इस तरह के जो संकट है, और जो ज़मीन का जो संकट है, आजकल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुपारी ज़्यादा कर रहे हैं लोग, सब्जी के हटा के सुपारी कर रहे हैं, सुपारी में काफ़ी ये सारा ये कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारे संकट हैं। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि 2047 तक हमें पैदावार बढ़ाना है, और उसके लिए कैरी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। कई सारे, जैसे मैंने बताया कि 43 हमने जो है अधिक उपज वाले जो है पौध के नस्लें जो हैं हमने तैयार किए हैं, ये एक उपाय है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है,
1: जी
0: क्लाइमेट रेसिलियंट, जो एकीकृत कृषि प्रणाली है, वही एकमात्र उपाय है जो आगे आने वाले जो हमारे 20 साल है 2047 तक का, हम जो एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, उससे निपटने का। और जल का संरक्षण, पानी का संरक्षण बहुत ही एक हमें इसमें कदम उठाना पड़ेगा।
1: तो जयसुंदर जी, आपने कैरी की गतिविधियों, किसानों के लिए विकसित तकनीकों और विकसित भारत 2047 उस पर उपयोगी जानकारी हमसे साझा की। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद है आज की चर्चा में आपको कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी अनेक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।
2: आमने सामने कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप द्वीपों में कैरी द्वारा चलाई जा रही गतिविधियां विषय पर कैरी के निदेशक डॉक्टर एस जयसुंदर के साथ पूजा सिंह की बातचीत सुन रहे थे। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए लेखक दिलीप नीमा की लिखी झलकी, लौट के बुद्धू।

0: आज इतनी जल्दी आ गए?
1: जल्दी आ गए? ओहो, भूल गई, आज सेकंड सैटरडे है।
0: ओह, मुझे तो याद ही नहीं था, सुबह क्यों नहीं बताया? कुछ प्रोग्राम ही बना लेते, पिक्चर का, पिकनिक का, कहीं भी जाते।
1: जरूर चलेंगे प्रिय, जरूर चलेंगे। पर पहले बताओ, ये तुम्हारे हाथ किस चीज से सने हुए हैं?
0: सोच रही थी आपको सरप्राइज दूंगी।
1: अच्छा,
0: आपको इडली डोसे बहुत पसंद है ना? वही बना रही थी। पर अब क्या, भेद तो खुल गया, मैं हाथ धोकर आती हूँ।
1: अच्छा सुनो, एक कप कॉफी तैयार कर लाना, तब तक मैं कपड़े बदल लेता हूँ। समझ में नहीं आता, आज ये बदली बादल पर इतनी मेहरबान क्यों है? इसी से पूछता हूँ।
0: जी जी जी, तैयार है आपकी कॉफी।
1: थैंक यू फॉर द क्विक सर्विस। समझ नहीं पा रहा हूँ आज तुम्हारी सेवा का मतलब क्या है। देखो ना, आज ना पहली तारीख है, ना शादी की वर्षगांठ है, और ना ही मुझे कोई बोनस मिलने वाला है। फिर क्या बात है भारिये, क्या चाहती हो मुझसे?
0: तुम मुझे स्वार्थी समझते हो क्या? पति की सेवा करना पत्नी का कर्तव्य नहीं है?
1: वो तो है, पर तुम्हारी इस प्रकार की

0: सेवा समय विशेष के लिए रिजर्व है। निस्वार्थ भावना की सेवा मैंने देखी नहीं तुम में। जरूर कोई बात है।
1: कोई बात नहीं है पति महोदय, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ।
0: अब तुम्हारे मन की बात तुम जानो। भाई मुझे तो भूख लगाई है खूब जोर से। कहाँ है तुम्हारे इडली डोसे?
1: बस अब भी तैयार करके लाती हूँ।
0: हाँ जल्दी। वाह वाह वाह, ओम, मजा आ गया। आज तो इडली डोसे में सचमुच मजा आ गया बदली।
1: इतने अच्छे लगे आपको?
0: हाँ प्रिय, अच्छी चीजों का तो मैं सदा से शौकीन रहा हूँ।
1: जिसका प्रमाण है हमारी लव मैरिज। हम दोनों एक दूसरे के शौकीन थे, पहली मुलाकात में एक दूसरे के हो गए थे, है ना?
0: हाँ बदली, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है बादल और बदली का ये संगम। हाय कितने तूफानों के बाद हुआ था।
1: हमारा प्यार अमर है बादल।
0: हाँ हाँ, हीर रांझा शीरी फरहाद, इसके बाद लोग बादल बदली इसके प्यार की मिसालें दिया करेंगे।
1: हाँ, हाँ बादल हाँ।
0: तो आओ इस सुहानी घड़ी में हम दोनों एक दूजे में खो जाएं। जब तक दोनों का संगम न हो, न पानी आएगा न बरखा।
1: मैंने तो अपनी संतानों के नाम भी सोच लिए हैं।
0: अच्छा,
1: लड़का हुआ तो नाम रखेंगे मेघ।
0: हाँ।
1: और लड़की हुई तो बरखा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात है।
2: बिल्कुल ठीक। अब और विलंब मत करो, आओ बदली। इस सूनी इंद्र कुटीर में ये मधुर चांदनी तुम्हें आवाज दे रही है।
3: मुझे बर्तन साफ करने हैं।
2: अरे बर्तन को मारो गोली, पहले इधर आओ।
3: मैं आ रही हूँ बादल, मैं ये आ गई।
2: बदली
3: बादल
2: बदली।

0: अरे बदली,
1: सुनती हो? आज संडे है, बॉस ने शाम को उनके घर डिनर पर बुलाया है, वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं, चलोगी ना?
2: लेकिन शाम को मैं कैसे चल सकती हूँ?
1: वो तो ठीक है, अरे हाँ तुम्हें कल बताना भूल गया था, पर एकदम कौन सी अड़चन आ गई?
2: मैं भी तुम्हें बताना भूल गई थी, ये चिट्ठी आई है बाबूजी की।
1: तुम्हारे बाबूजी की?
2: हाँ, लिखा है सोमवार को तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं मम्मी के साथ, इसीलिए जरूरी में मिलने के लिए बुलाया है।
1: अब बदली देखो, तुम्हारा जाना टल नहीं सकता क्या वहाँ पे? अरे बॉस को मैं जबान दे आया हूँ, यहाँ चलना पड़ेगा।
2: जरा सोचो तो, उनके सिवा मेरा है ही कौन? पहले जाऊंगी तो सामान बांधने में हाथ बटा दूंगी, फिर दो ही दिन की तो बात है, आज जाऊंगी कल वापस।
3: हाँ, आज जाऊंगी कल वापस।
1: जानती हो शादी के 6 महीनों में 6 बार मैके होकर आई हो तुम, यदि मैके से माँ बाप से इतना ही लगाव था तो मुझसे शादी क्यों की?
2: ओफो, आप तो खामखा बिगड़ रहे हैं।
1: अरे बिगड़ू नहीं तो क्या करूं, अरे बॉस के यहाँ नहीं गए तो रही सही इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ आप समझा, तुम कल इतना मस्का क्यों मार रही थी?
2: लेकिन तुम्हारे जीव भागे तो नहीं जा रहे हैं, अरे परसों भी मिल सकते हैं उनसे।
3: हाँ, मिलने के लिए हर समय फुर्सत में ही तो बैठे रहते हैं वो।
1: जानती हो बड़ी मुश्किल से मेहरबान हुए हैं वो।
2: तो फिर आप ही बताओ क्या करें, अरे मेरा जाना तो बहुत जरूरी है।
1: मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें शाम को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा।
2: तुम्हारे माँ बाप की तो तुमसे दुश्मनी है, तुम क्या समझो औलादों का प्यार प्रेम?
1: शादी के पहले तक उनका खूब लाड़ प्यार भोगा है मैंने, जानती हो सिर्फ तुम्हारे कारण मैंने उनको छोड़ा।
2: लेकिन मेरे माँ बाप इस शादी के खिलाफ नहीं थे, अब बेटी की मर्जी को उन्होंने सर्वोत्तम समझा, तो क्या बेटी का फर्ज नहीं बनता?
1: हाँ,
2: कि वो जाकर
1: फर्ज। हाँ अच्छी बात याद दिलाई, अरे पति परमेश्वर होता है, तुम्हें पहले मेरा कहना मानना चाहिए। तुम्हारे माता पिता का क्या है, तीर्थ यात्रा से लौटे नहीं कि फिर बुलावा भेज देंगे, प्रसाद खा लो।
2: बाप रे, मेरे मैके पर इतनी छीटा कसी, मुझे नहीं मालूम था जरा जरा सी बात पर ऐसे झगड़ोगे, वरना मैं आपसे हरगिज शादी नहीं करती।
1: हाँ, मैं ही तो गरज लेकर आया था ना, भूल गई जब तुम्हें गिड़गिड़ाई थी?
4: बादल, बादल मुझसे ब्याह

0: कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो अपनी सहेली वीणा, वो वीणा अभी तक याद है मुझे, उसके हाथों तुम मुझे लव लेटर भिजवाया करती थी।
1: बको मत, शादी का प्रस्ताव तुम्ही ने रखा था, पहले पत्र तुम्ही ने लिखे थे। तुम्ही जब मैं वहां जाती थी ना तो मेरा पीछा करते थे, मुझे गिफ्ट देते थे, होटल ले जाते थे, सिनेमा ले जाते थे। क्यों बोल रहे सब?
0: जबरदस्ती नहीं ले जाता था कोई, तुम ही मुझे उकसाती थी।
1: क्या?
0: हाँ, दफ्तर जाता था तो कॉलेज रास्ते में पढ़ता था, अरे मैं कोई अलग से नहीं आता था ना तुम्हें देखने वहां पे, और तुम मुझे घूर घूर के देखती रहती थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुमने मुझे फंसाने के लिए हर संभव कोशिश की।
1: हे भगवान, ये क्या अंधेर है! कह दो मेरे दूर के रिश्तेदार नंदू से तुमने अचानक मेरे खातिर दोस्ती नहीं बढ़ाई? कहो, भूल गए क्या? बाद में मेरे घर तक आने लगे, मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मेरे माँ बाप को फुसलाने लगे।
0: हाँ, तुम्हारे माँ बाप तो बहुत सीधे थे ना, बिल्कुल गाय। अरे पैसा पानी की तरह बहाया मैंने, उनकी नजर हमेशा मेरे बैंक बैलेंस पे रहती।
1: खबरदार, यदि मेरे माँ बाप पर दोष लगाया तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगी।
0: अच्छा, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है, हम तू तुकारे और खबरदार तक आओ है? हमें साथ रहने का हक नहीं है। अब तुम पल भर भी यहाँ रुकी ना तो मैं गरज पड़ूंगा।
1: और मैं बरस पड़ूंगी।
0: तो बरसो।
1: अरे पहले आप गरज जाओ।
0: देखो बदली, हम दोनों तैश में हैं इस वक्त, अच्छा रहेगा तुम चली जाओ, लेकिन इसे मेरी हार या स्वीकृति ना समझना। याद रखो, मेरी मर्जी का बगैर जा रही हो लेकिन मेरी इजाजत के बगैर दाखिल ना होना।
1: अरे हाँ, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी इंद्र कुटीर, मुझे भी सौगंध है जो बिन बुलाए इस घर में कदम रखूं।
0: हाँ, चली जाओ। जाने क्या समझती हैं ये पत्नियां, अपने महके और शादी के बाद अपने पति को मैं भी सबक सिखा कर रहूंगा। दो दिन हो गए, जाने क्या समझती है अपने आप को और अपने माँ बाप को है? क्या मैं अकेला नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकता हूँ, मैं संभाल नहीं सकता सब कुछ कर सकता हूँ। चाय का जुगाड़ करूं।
2: अरे गैस बंद। ओहो, लगता है टंकी खत्म हो गई है, स्टोव जलाने में तो बड़ी मारा मारी है। मैं ठीक है, चलो बाजार में ही पी लूंगा, चाय का क्या है।
1: महाशय, मैं कुछ मदद करूं?
0: आ गई आप नकटी बनकर।
1: अरे घर है मेरा, 100 बार आऊंगी, आखिर अग्नि के समक्ष फेरे लिए हैं हमने।
0: हाँ, और सौगंध खाई थी साथ रहने की, छोड़ने की नहीं।
1: ओफो, अब गुस्सा थूक भी दो ना, माफ कर दो कल की गुस्ताखी के लिए। प्लीज मैं अंदर आऊं, अभी तो मैंने देरी भी नहीं लांगी है।
0: मत आना, बिल्कुल नहीं, अगर तुम में जबान की जरा सी भी सत्यता है, मेरा गुस्सा इतना सस्ता नहीं है। जानती हो बॉस के सामने आज मुझे कितना जलील होना पड़ा, क्या क्या पूड़ी पकवान नहीं बनाए थे उन्होंने, सब बेकार हो गए।
1: अरे मेरी मजबूरी थी, वरना ये सब करने में मुझे मजा थोड़ी आ रहा था। आप तो सब समझ कर भी इतने निष्ठुर हुए जा रहे हैं, जरा जरा सी बोल चाल क्या इतना तूल पकड़ती है।
0: मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ, दूर हट जाओ तुम, हटो दूर, मुझे चाय पीने जाना है।
1: आए हाय, पहले कपड़ों पर इस्त्री तो करवा लीजिए, कपड़ों पर कितनी सलवटे हैं, आसपास वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे।
0: कहने दो, देखने दो, उन्हें भी तो तुम्हारी जाति का पता चले।
1: जाति तो आप कर रहे हैं, मुझे और ना सताओ, वरना
0: गुस्सा हो जाओगी, यही ना। गुस्से में वैसे भी तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो।
1: मैं रो पड़ूंगी।
0: तो रो। अरे बदली का अर्थ कहीं तो सार्थक हो।
1: क्यों तमाशा बना रहे हो, आसपास वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी से इतना वैर भाव।
0: क्या कहा तुमने, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है? अरे तो कल ये तुम्हारा रूप कहाँ गया था, कल तो काली बनकर गई थी यहाँ से, ना आने की धौंस दी थी मुझे तुमने।
1: आपको भी तो न ले जाने पर पिताजी नाराज हुए, कितना गुस्सा हुए कि वो क्यों नहीं आए, और मुझे भी बहुत डांटा, कहा पति का घर ही पत्नी का सब कुछ होता है, तीर्थ यात्रा से लौटने पर वो मुझे यहीं देखना चाहते हैं, अब मैं और कहाँ जाऊं।
0: अच्छा, तो पिताजी की बात और डांट तुम्हें समझ में आई?
1: अरे सुबह का भूला शाम को खरा जाए।

0: भूला नहीं कहते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कहना गलत है। तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि लौट के बुद्धू घर को आए। चलो अब जाओ और पहले चाय बनाओ।
0: चाय? तो आपने मुझे माफ कर दिया ना?
1: माफ तभी करूंगा जब मुझे दोबारा ऐसी हरकत ना करने का वादा करोगी।
0: तो वादा करती हूँ बाबा।
1: वादा करती हो ना?
0: हाँ।
1: तो फिर सच कहूं बदली, इन दो दिनों में तो जैसे मेरी कमर ही टूट गई। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना।
0: मैं भी तुम्हारा मन दुखाकर बहुत दुखी हुई।
1: आखिर हमारा प्यार सच्चा निकला।
0: सब कुछ सच है जी। जानते हो मैंने झूठ कहा था। वो कॉलेज के बाहर मैं ही तुम्हें देखने के लिए खड़ी रहती थी।
1: फिर मैं भी बोल ही दूं ना सच? तुम जानती हो मेरे दफ्तर का रास्ता तो अलग था।
0: जानती हूं।
1: मैं तो जानबूझकर तुम्हारे उधर से निकलता था तुम्हें देखने के लिए।
0: सच? सच बात है?
1: हाँ बदली।
2: श्रोताओं, अभी आप दिलीप नीमा की लिखी झलकी लौट के बुद्धू घर को सुन रहे थे। निर्देशक थे संतोष जोशी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी सवेरे 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5 बजे एग्री टिप्स, विषय रहेगा धान की प्रमुख बीमारियां। जलयानों की यात्रा कार्यक्रम से श्रोताओं आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। इंद्रधनुष कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 6:15, विषय रहेगा दोस्ती। सवेरे 6:30 पर सुनिए रामचरित मानस गान। वतन के गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 6:40 पर। सवेरे 7:15 पर सुनिए देश रागनी कार्यक्रम।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सवेरे 8:30 पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम, फनकार होंगे निशिकांत। बाल जगत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 9:00। सवेरे 9:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित भजन सोपरी का हिंदुस्तानी शैली में संतूर वादन।

लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का समय रहेगा सवेरे 10 बजे। मेरी पसंद ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन के 11 बजे।

11:30 पर सुनिए कार्यक्रम गजल। कलाकार होंगे मंदिरा लहरी, उर्मिला नागर, जयश्री गुप्ता। एक बजकर 10 मिनट पर सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार होंगे ताहिरा सईद।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
4: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
5: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
6: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
2: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
7: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
2: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
8: यन पॉलिसी यन कयल।
2: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। नशा मुक्त युवा कार्यक्रम के तहत आज महात्मा गांधी कॉलेज की NSS माई भारत इकाई की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया और अगस्त और सितंबर माह के दौरान आयोजित होने वाली जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी घोषित की गई है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करेगी तथा आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के

सेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन का सहभागी बनाना है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कृषि यांत्रिकीकरण और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार उद्यमियों और स्टार्टअप से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवोन्मेषकों को परामर्श, इक्यूबेशन तथा मार्गदर्शन, हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना है। चयनित उम्मीदवारों के लिए 2 महीने का इक्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के तहत द्वीप कृषि प्रौद्योगिकियां, नारियल और मसालों का मूल्य संवर्धन, एकीकृत मत्स्य पालन, संरक्षित खेती, जैविक खेती के उत्पाद और जलवायु अनुकूल कृषि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इच्छुक उद्यमी और स्टार्टअप 15 अगस्त तक कैरी के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, नशा मुक्त युवा कार्यक्रम और जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के 10,000 स्थानों से करीब 1 करोड़ युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। विकसित भारत अभियान के तहत नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायबंदर की NSS माई भारत इकाई की ओर से आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन को अपर जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्णा चैतन्य, उपमंडलीय मजिस्ट्रेट तथा मध्योत्तर अंडमान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वॉकथॉन दानापुर जंक्शन से शुरू होकर मायबंदर बाजार में संपन्न हुई। इस अवसर पर कॉलेज के NSS कार्यक्रम का अधिकारी डॉ. कांडीमुत्तु ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के तहत वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति, परिवार और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्हें स्वस्थ आदतें अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस रैली में लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार राष्ट्र ओलंपिक संघ ने कहा कि द्वीप समूह के साइकिल चालक डेविड बेकहम को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। उनकी यह सफलता द्वीप समूह में खेल प्रतिभाओं की निरंतर विकास को दर्शाती है और केंद्र शासित प्रदेश के उभरते एथलीटों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से अगस्त और सितंबर माह के दौरान श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी घोषित की गई है। ओपन स्टेट माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप 16 अगस्त को आयोजित होगी, जिसके लिए प्रविष्टि की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इसके अलावा जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप और जिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 22 तथा 23 अगस्त को आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। सभी इच्छुक खिलाड़ियों और टीमों से अपनी प्रविष्टियां निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करने को कहा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र, गूगल फॉर्म लिंक और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज मध्योत्तर अंडमान के जिला चिकित्सालय डिगलीपुर में स्थानीय मरीजों की सुविधा के लिए 3 व्हीलचेयर उपलब्ध कराई। इस पहल का उद्देश्य अस्पताल आने वाले मरीजों और बुजुर्गों को

बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी, कर्मचारी, स्थानीय मेडिकल संचालक, INA के प्रदेश अध्यक्ष RP यादव और एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार मिश्रा उपस्थित थे। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संसाधन व्यक्तियों और अतिथि प्रवक्ताओं की अंतिम पैनल सूची कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अतिथि संकाय के चयन के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची महाविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट पर उपलब्ध है। राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान डिगलीपुर में अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक कारणों से परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। अब यह परीक्षा 18 से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। मालवाहक जहाज MV चुगलुम 9 अगस्त शाम 4 बजे जंगलीघाट जेट्टी से कारनिकोबार, चौरा, तरेसा, कचाल और ननकौड़ी होते हुए कैंबल बे के लिए रवाना होगा। संबंधित बंदरगाहों पर माल उतारने और चढ़ाने के बाद जहाज श्री विजयपुरम के लिए वापसी करेगा। इस यात्रा के लिए माल की बुकिंग 3 अगस्त से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वाणिज्यिक विभाग से की जा सकती है। जहाज पर माल चढ़ाने का कार्य 5 अगस्त से किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। नशा मुक्त युवा कार्यक्रम के तहत आज महात्मा गांधी कॉलेज की NSS माई भारत इकाई की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया और अगस्त और सितंबर माह के दौरान आयोजित होने वाली जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की समय सारणी घोषित की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचना। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधित अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 4 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी रंगत माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर सोमवार 3 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी मंगलवार 4 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कैंबल बे मंगलवार 4 तारीख को सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा जलयान मंगलवार 4 तारीख को सवेरे 9 बजे नानकौरी होते हुए कैंबल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 6 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग रविवार 2 तारीख को सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड सुराजदीप होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी जॉली बॉय कल रविवार 2 तारीख को सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी स्वराज द्वीप से सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी कल रविवार 2 तारीख को दिन के 11:00 शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 1:00 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा। स्वराज द्वीप से जलयान की वापसी दोपहर 2:30 पर होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल रविवार 2 तारीख को दिन के 11:30 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस बीच ये जलयान दोपहर 2:00 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान की वापसी शहीद द्वीप से दोपहर बाद 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत कल रविवार 2 तारीख को दोपहर 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी शहीद द्वीप से 4:30 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी चंगा रविवार 2 तारीख को शाम 5:00 स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 3 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुआ। जन सूचना गैर कानूनी कृतियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 01112-0312-23200, 0312-23300 और 0319-232-400। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचना समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

एमजी श्री कुमार अनुराधा पौडवाल की आवाजों में श्रोताओं लीजिए सुनिए डोली सजा के रखना फिल्म का ये गीत। महबूब के लिखे इस गीत को शुरू से सजाया है एम आर रहमान ने।

आप सुन रहे थे चांदनी फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को शुरू से सजाया था शिवहरि ने, आवाज़ थी सुरेश वाडकर और अनुपमा देश पांडे की। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया श्रोताओं अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युव वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 1 अगस्त है और प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और माताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनिसेफ के अनुसार जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना तथा जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध देना शिशु के स्वस्थ विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पोषण के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह सप्ताह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तथा स्तनपान के अनुकूल वातावरण विकसित करने का संदेश देता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि भी है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध उद्घोष स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा स्वाधीनता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण किया तथा सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिवाजी महोत्सव को राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बनाया। उनकी पुण्यतिथि हमें राष्ट्र प्रेम, साहस, शिक्षा और जनसेवा के आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, हमें कभी भी आने वाले कल की फिक्र में या बीते हुए कल की याद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा ही अपने वर्तमान समय को अच्छे से जीना चाहिए और अपने सही निर्णयों से अपने भविष्य को निर्मित करना चाहिए।

0: दोस्तों आज शनिवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम ऐसा भी होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: दोस्तों आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही एक जगह जापान के पास भी है? दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जापान के ड्रैगन सी ट्रायंगल के बारे में। दोस्तों ड्रैगन ट्रायंगल, जिसे डेविल सी भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर में जापान के पास स्थित एक रहस्यमयी क्षेत्र है। इसे बरमूडा ट्रायंगल की तरह खतरनाक माना जाता है। इस क्षेत्र में कई जहाज़ों और विमानों के अचानक गायब होने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। कुछ लोग इसे चुंबकीय विक्षोभ, समुद्री ज्वालामुखी या असामान्य मौसम परिस्थितियों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे अलौकिक शक्तियों का परिणाम बताते हैं। जापान सरकार ने भी एक समय क्षेत्र पर शोध करवाया था। दोस्तों आज भी यह ड्रैगन ट्रायंगल वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक राज बना हुआ है।

दोस्तों, आपने झील तो कई देखे होंगे, परंतु ऐसा झील नहीं देखा होगा जो मौसम के साथ रंग बदलता हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कैनो क्रिस्टल्स झील की। दोस्तों, कैनो क्रिस्टल झील को पांच रंगों की नदी या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। यह कोलंबिया देश में स्थित एक बेहद सुंदर और प्राकृतिक नदी है। इस नदी की खास बात यह है कि इसमें लाल, पीला, हरा, नीला और काला जैसे कई रंग दिखाई देते हैं। यह रंग पानी में उगने वाले विशेष प्रकार के पौधों और शैवाल के कारण बनते हैं। खास मौसम में जब सूर्य का प्रकाश सही कोण पर पड़ता है, तब यह नदी किसी चित्रकला जैसी लगती है। अपनी दुर्लभ सुंदरता और जैव विविधता के कारण कैनो क्रिस्टल लेक को दुनिया की सबसे सुंदर नदियों में गिना जाता है। दोस्तों, इस नदी को देखकर आपका भी दिल चाहेगा कि आप यहाँ एक नाव में बैठकर बस सैर करते रहें।

दोस्तों, हम द्वीपों में रहते हैं, समुद्र से घिरे हुए, और आप भी तो समुद्र में जाते ही होंगे। परंतु कभी आपने सोचा है कि अगर आप समुद्र में डूबे ही ना तो क्या होगा? दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डेड सी। दोस्तों, डेड सी दुनिया का एक अनोखा खारा जलाशय है जो इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक नमक की मात्रा होने के कारण मछलियाँ और जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। यहाँ का पानी सामान्य समुद्री पानी से लगभग 10 गुना ज़्यादा खारा है, जिसके कारण इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से तैर सकता है। डेड सी कीचड़ और पानी में खनिज तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा रोगों के उपचार में सहायक माने जाते हैं। यह समुद्र पृथ्वी की सतह के सबसे निचले स्थानों में से एक है और वैज्ञानिक और पर्यटक दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, अगर आप इस खारे पानी में जाते हैं तो आपका वहाँ से लौटने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा।

चीज़ों से भरी हुई है। और आज हम आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने फूल तो बहुत देखे होंगे, परंतु आपने कभी ऐसा फूल नहीं देखा होगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बड़े और बेहद सुंदर विक्टोरिया वाटर लिली के बारे में। दोस्तों, यह फूल अमेज़न के बरसाती जंगलों में पाया जाता है। यह फूल आकार में बड़ा होता है और इसकी पत्तियाँ 10 फीट व्यास तक बढ़ सकती हैं, और इसके अलावा यह पत्तियाँ 29.4 किलोग्राम तक भार उठा सकती हैं। दोस्तों, विक्टोरिया वाटर लिली के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उस पूरे इलाके में बहार आ गई हो।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का यह ऐसा भी होता है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है।
0: वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन

की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन

विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। माजी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान

0: श्री सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जाँच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:16 और 12 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब।

आनंद महल, श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत येसुदास की आवाज में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन तथा राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों में MIS डेटा एनालिस्ट का एक पद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के दो पद, अकाउंटेंट का एक पद तथा HMIS असिस्टेंट के 6 पद शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए 40,000 प्रतिमाह, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एवं अकाउंटेंट पद के लिए 30,000 प्रतिमाह तथा HMIS असिस्टेंट पद के लिए 20,000 प्रतिमाह का समेकित मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। MIS डेटा एनालिस्ट पद के लिए BE BTech या MCA या MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट अथवा समकक्ष योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में कई कार्य अनुभव आवश्यक है। MHPH मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ अथवा समकक्ष योग्यता भी मान्य है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री संबंधित तकनीकी योग्यता तथा TIA एवं MCAI क्षेत्र का अनुभव अपेक्षित है। अकाउंटेंट पद के लिए MCOM डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान या BCOM डिग्री के साथ लेखा एवं वित्तीय क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। HMIS असिस्टेंट पद के लिए BCA कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी अथवा समकक्ष विषय में स्नातक डिग्री तथा संबंधित अनुभव आवश्यक है। सभी पदों के लिए आयु सीमा 21 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन शैक्षणिक योग्यता अनुभव एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2026 है, अर्थात संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी

बीमारी के लिए अभ्यर्थी राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही 22 जुलाई का द डेली टेलीग्राम भी देखा जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आइए गौरव गान के तहत सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

संवेद स्वर में गाए इस देशभक्ति गीत के साथ ही गौरवगान कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं।

0: आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
0: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा

0: पूर्वोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
1: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल

0: गार्डो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में और ज्यादा फोकस करूंगा और आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
2: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was

0: was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
1: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड

से पटे तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूँ, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी। फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है।

पिछले भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों की, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है। लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है। और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी, स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है, इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, और लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था,

0: वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी, जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर, जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में, यानी अत्यल्प में, पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण। और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो, मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का।

0: जहाँ पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो, ईश का अस्तित्व सत्य न मानते हैं, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव, इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है? तू काल, सचमुच काल ही है, क्रूर और कराल है।
1: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई, तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की ये स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथे बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
0: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
1: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
4: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
0: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता

0: के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
1: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
0: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
1: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
0: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दया

0: राम निगम ने दिया, और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
1: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं, तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
2: वाचन आनंद श्रीवास्तव, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। चिन्मया सिस्टर्स आर वन ऑफ द लीडिंग एंड पॉपुलर डियो इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। With their mellifluous voices, spirited singing, and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Shri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Shri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and absorbed the specialities of their guru style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindra on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the Mridangam and Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
1: The concert for tonight begins with the composition of Harikeshanallur Muthaiya Bhagavathar in Raga Nattai set to Rupaka Talam Shakti Ganapatim.

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं माँ मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद माँ मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Sri B. Ganapati Raman on the mridangam and Sri N. Sundar on morsing.
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा। रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika continues their concert with Nanu Palimpa, a composition of Saint Tyagaraja in Raga Mohanam set to Aditalam.

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Baji Maname, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Adithalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashwani Chennai and was broadcast from Akashwani Delhi.
2: हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिस कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। इस समय रात्रि के 11:01:27 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम पर कल सुबह 6 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

Mike Wong.

Hello, this is Talk Studio. Then now time is 5:16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

ആകാശവാണി ഹെ

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की श्रावण माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। शुभारंभ। आइए सुनते हैं अनमोल विचार।
1: आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वो अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है। आलस्य हमें अवसरों से दूर कर देता है, जबकि परिश्रम हमें सफलता के करीब ले जाता है। इसलिए हर दिन उत्साह और समय का सदुपयोग करते हुए अपने कार्य पूरे करें, यही सफलता की पहली सीढ़ी है।
0: अभी आपने सुना अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति रस का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मातृवंदना संवेद स्वरों में।